लेकिन उस वक्त तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, वो ही ने जलजला ही ने ट्रेबुलेंस जो है, इंसान को एक लम्हे के लिए शक नहीं होता कि खुदा नहीं है। एक जब हो रही है परेशानी उसको यकीन है कि खुदा है, अगर कोई नजात दे सकता है तो वही। तो इंसान अगर इस लिंक को बाकी रखे तो कभी वो जिंदगी में परेशान होने वाला नहीं है। इमाम सज्जाद अलैहि सलातो वसलाम चौपन दुआओं में से एक दुआ है, जब कभी इस तरह के हालात हो जाते थे।

कभी मुहिम्मात होते थे, जब कभी परेशान हो जाते थे, मौला इन अल्फाज में दुआ करते थे। तो मौला ये बता रहे हैं कि हमारे पास रास्ते मौजूद हैं उस परवरदिगार के लिए। इसीलिए मैंने एक जुमला कहा था, 300 से ज़ायद मोर देन 300 दुआएं हैं अहले बैत की प्रिस्क्राइब की हुई। कम से कम मेरे जो स्टडी है, मुमकिन है कि ज़्यादा कम हो, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ मैं। इतनी दुआएं रखते के बाद इंसान का मुतजलजिल होना इस बात की दलील है कि हम लोग दुआओं से करीब नहीं हैं। जब परेशान हो जाए तो घबराएं नहीं, सीधी दुआओं की तरफ जाएं, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। उसी तरह से जिस तरह से स्विच ऑन कर दिया तो लाइट आने लगी, उस स्विच को ऑन कर दीजिए, लाइट आने लगेगी, आपको सुकून मिलेगा, आप कभी घबराएंगे नहीं। किन्हीं हालतों में, अब मैंने बताया था कि गजा के जो हालात हैं, इन हालात को समझना है तो बहुत मुश्किल समझना है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ नमाजें हो रही हैं, वहाँ जुमे के खुतबे हो रहे हैं, वहाँ पर दुआएं हो रही हैं, तो पता चल रहा है ये दुनिया की परेशानियों से घबराने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान मुसीबतों में भी उसको कभी भुलाता नहीं है। तो इसीलिए कभी भी अगर कोई परेशानी हो तो मौला अमीर मोमिनीन का नुस्खा अलैहि अफजलु सलातु वस्सलाम। दुनिया में खुश रहने के लिए मौला फरमाते हैं अपने से कमतर को देखो। जी, दुनिया में खुश रहना है तो अपने से कमतर करो। यानी अगर मैं मसलन एक गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे सामने से एक बेंज चले गई, तो उसको देखूंगा तो सिवाय जलने के कुछ भी नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि जो गाड़ी चला रहा हूँ, जिसके पास नहीं है, उसको देखूँ। जी, अब वो नहीं है, वो क्या देखे? उसको देखे जिसके पास बाइक भी नहीं है। वो किसको देखे? जिसके पास वो बाइक भी नहीं है। वो किसको देखे? जो चल भी नहीं सकता। वो किसको देखे? जो जाइए, इसीलिए अहादीस में है कि कोशिश करें बीमारों से विजिट करें, जाके आयादत करें, ताकि पता चले कि आपकी हयात की कीमत क्या है, इंसान की कीमत क्या है। हर लम्हा, इसलिए इस्लाम इनक्रेज करता है दो बातों को, आयादत और कब्रिस्तान के विजिट को। हर जुम्मे को कोशिश ये करो, जुमेरात या जुम्मा जाओ, विजिट करो और कहो, सलाम करो वहाँ पर। इंशाअल्लाह नहनु मिनकुम लाहिकून, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ मुलाकात करने वाले हैं। ये ऑब्वियस है, ये कोई इससे कोई भागने की चीज़ नहीं है। इस्लाम क्यों कहता है? ताकि इंसान का जहन मुतवाजिन रहे, इंसान का जहन वो कहीं पागल ना हो जाए, बल्कि उसे अपने मंजिल पर रखे रहे। इसीलिए मौला ने क्या फरमाया? अगर दुनिया में खुश रहना है तो अपने से कमतर को देखो, आखिरत में खुश रहना है तो अपने से बरतर को देखो। सिर्फ नमाज पढ़ रहे हो तो खुश मत हो जाओ, उसको देखो जो नमाज शब पढ़ रहा है, और नमाज शब पढ़ने वाला उसको देखे, रोजाना 34 रकात नमाज नफल पढ़ रहा है, उसको देखने वाला अगर 34 रकात पढ़ रहा है, 51 रकात नमाज पढ़ रहा है, उसको देखिए, और जो रात रात भर हजार हजार सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक फजीलत का रुख है, बेहतरीन फजीलत का रुख है, याद रखिए इस चीज़ को, बहुत खूबसूरत है ये, जिसको फजाइल कहते हैं। देख सुनिए, मौला ने फरमाया दुनिया में खुश रहना है तो अपने से कमतर को देखो, आखिरत के लिए खुश रहना है तो अपने से बरतर को देखो। जब हमने दुनिया के तबकात को देखने लगे तो फातिमा जहरा चक्की पीसते नजर आई, यानी जब नीचे आते हैं तो फातिमा नजर आती है, जब बुलंद जाते हैं तो अली नजर आता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल फरज, इस जिस्म को इंसान बैलेंस रखे रूह की गिजा के साथ। ये हमारी गुफ्तगू, कल मैंने ज़रा सा गुफ्तगू की तो बाज मोमिनीन ने कहा ज़रा सा हार्ड मौलाना, इसको कोशिश ये करें मिसालों से आसान बनाएं। ये मौजू ही ज़रा सा ऐसे ही है, लेकिन माशाल्लाह कब तक हम लोग सिर्फ प्राइमरी में रहेंगे, इंशाल्लाह ज़रा सा दो चार कदम आगे बढ़ें, बहुत बातें आसानी से समझ में आएंगी। एक सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल हमारी गुफ्तगू थी कि इंसान का राबता जब तक अपने जिस्म और रूह से साथ साथ नहीं रहेगा
परेशानियां होंगी, इसीलिए इस्लाम ने

इंसान के जिस्म की तहारत का कहा है, और जिस्म की तहारत जैसी होती है रूह की भी बालिदगी होती है इंसान। कल मैंने हदीस सुनाई थी कि वुदू जब करता है इंसान, चटे इमाम ने फरमाया तीन फायदे हैं, नंबर वन क्लीन हो गया, नंबर टू अल्लाह के हुक्म की तामील की, नंबर तीन उसमें निशात पैदा हुआ। जिस वुजू के बाद ये कैफियत जो पैदा होती है एक अजीब व गरीब कैफियत है, वह निशात पैदा हुआ, वह इंसान में एक एनर्जी पैदा हुई, वुजू ये कर रहा है। तो इंसान को चाहिए अगर हम तहारत को कितना बुलंद करने लगेंगे उतना ही बुराइयों से दूर होंगे। रिवायतों में है, अहादीस में है, इनक्रेज किया गया है, कोशिश ये करो कि वुजू से हमेशा रहो। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। अब ये जो मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, जो आदमी रोज़ाना जैसे ही वजू उसका टूटा, वॉशरूम गया किसी वजह से, वो फौरन वजू कर लिया, तो वजू कर लिया के माने उसने नूर को अपना लिया, उसने लाइट को जगा लिया, लाइट जल गई। और अगर मसलन शरीयत का हुक्म है मगरिब की नमाज आजकल 7:31-32 का, ठीक, मैंने 5 बजे वजू किया था मुस्ताहब नियत से, सुन्नत नियत से, कुर्बतन नियत से, वजू में रहने के लिए वजू किया, मगरिब का वक्त आ गया, अब मेरा वजू बाकी है, क्या मुझे वजू करना है? नहीं, उसी वजू से हम नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन वजू पर वजू कर लो तो नूरुल अला नूर, यानी नूर पर नूर है। क्या यह हदीस कोई मामूली चीज नहीं है? वुदू वुदू नहीं है, इंसान के लिए लाइट है, एनलाइटमेंट है, और एनलाइट करना है तो नूर से मिला देना है। इसीलिए कहा करता हूँ से नूर से नूर ही मिलता है, जुल्मतें मिलती ही नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। आप लोग आज करीब करीब आ जाइए, तहारत बहुत ही अहम चीज़ों में से एक है, और 1000 से जायद मसाइल हैं मसाइले तहारत। क्यों हैं? इंसान जब तक बुनियाद उसकी सीधी नहीं होगी उस वक्त तक उसकी इमारत सीधी होने वाली नहीं है। कोशिश हम लोग करें जिन अहादीस को सुन रहे हैं, जिन अहादीस को पढ़ रहे हैं, उस पर आमिल होने की, आमिल अमल करने की। हम लोग बेहतरीन सामिया हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। दूसरे मकाम पर जाइए, किसी को 1 घंटा बिठाना आसान नहीं है। हमारे यहाँ मोमिनीन 1 घंटा मजलिस में बैठते हैं और सुनते हैं, बहुत बड़ी बात है। सामिया हैं, बेहतरीन सामिया, सुनने वाले को लिसनर को कहते हैं अरबी में सामिया, उर्दू में भी कहते हैं सामिया। अच्छे सामिया हैं, अच्छे आमिल भी बन जाइए, इन्हें अच्छे सामे हैं, अच्छे प्रैक्टिस करने वाले बन जाइए, तो हमारी जिंदगियां बल्द। जो बताया जाता है कोई मामूली चीज़ नहीं, कोई भी एक आलिम आकर के बैठ रहा है, वो कई किताबों का छानने के बाद नताज निकाल करके एक मौजू को सामने रख करके आपके सामने पेश करता है, ये कुरान है, ये कुरान की आयत है, ये आयतों के ज़रिए से अहल बैत ने ये कहा है। ये तमाम जो ज़खीरा आपको मिल रहा है, आपको बैठे बैठे मिल रहा है, शायद 50-60 किताबों के चंद निकात आपके सामने पेश किए जाते हैं, तो इससे फ़ायदा उठाएं। कैसे फ़ायदा उठाएं? जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम कोई चीज़ हासिल करने वाले नहीं हैं। इसीलिए मौला ने फरमाया अल इस्लाम कुल्लुहु अमल, अल इस्लाम कुल्लुहु अमल, इस्लाम कुछ भी नहीं है, इस्लाम इज इक्वल टू एक्शन। अगर एक्शन नहीं है तो इस्लाम नहीं है आपके पास, तो खैरुल अमल हय्याला खैरुल अमल, यानी सिर्फ एक्शन नहीं है परफेक्शन है। इस्लाम ये नहीं कह रहा सिर्फ एक्शन करो परफेक्शन पे जाओ, अहले बैत के मानने वाले परफेक्शन, परफेक्शन ऐसा हो दुनिया वाले जितनी तरक्की करने वाले जब तुम्हारा लेज़र गाइडेड जाए तो किसी और चीज़ की तारीफ ना करें, कहें प्रिसिशन की तारीफ। यहाँ पर यह कुछ और नहीं है, ईरान की तरक्की का सबसे बड़ा मरहला ये है कि इतनी दूर से आ रहा है, जहाँ नुक्ता लगना है वहीं लग रहा है, तुम नहीं जानते ये किस नुक्ते के मानने वाले। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।

ये बॉर्डर्स इंसान ने बनाए हैं, अल्लाह की बारगाह में कोई बॉर्डर्स नहीं। इंशाल्लाह इमाम ज़माना जब तशरीफ लाएंगे पहला जो काम करेंगे पासपोर्ट ख़त्म, सब लोग जो जाना ईस्ट वाला वेस्ट, किसी को कोई आज भी अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यही प्रॉब्लम है कि सारी प्रॉब्लम जो है बॉर्डर्स की वजह है। ये बॉर्डर्स को ख़त्म कर देंगे इमाम तो जहाँ चाहे चले जाइए, तरक्की के लिए दुनिया भर जाइए लेकिन अखलाक की तरक्की के लिए कहीं नहीं जाइए। हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व जब कभी फीलिंग ऑफ डिप्रेशन हो रहा है तो क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? लीजिए मैं आपको ये मिसाल जो है हम लोग दूसरे मानों में लेते हैं, मैं आपको आज के इस मौजू से मरबूत करूंगा। शहजादी कौन है सलवातुल्लाह सलाम अलैहा, जी आपकी अर्ली शादी हुई, अर्ली निकाह हुआ, बच्चे हो गए चार और काम बढ़ गया घर में, जी छोटे छोटे बच्चे हैं काम डबल हो गया। शहजादी जाती है बाबा के पास, मैं मेरी बहनों से मेरे आजकल का जो मसला है सबसे बड़ा जो परेशान कुन मरहला है, मेरे नौजवान बच्चे अच्छी तरह समझे, हम लोग जो हैं उर्दू में हमारे यहाँ हमारे देहात में एक कहावत है, देखा देखी चूल्हा फूकी, जी देखा देखी चूल्हा फूकी। फलां घर को गए देखा वहाँ सोफा अच्छा नजर आ, घर में आ गए मियाँ वहाँ डिनर कितना अच्छा था, डिनर टेबल जी हाँ हमारे पास। ये देखा देखी मत करिए, मेरी सिचुएशन अलग, अगर बच्चा भी आपको आके गिला करे बाबा मेरा दोस्त जाए उसके पास फलां कंपनी का शूज़ है तो उसे कहिए बेटे को सीने से लगाई, आई लव यू सो मच, खुदा ने उनको बहुत दिया, अल्लाह उनको और ज़्यादा दे, लेकिन बेटा मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो इसीलिए हमारा काम यह है कि जितने चादर है उतने ही फैलाना है, इंशाल्लाह तुम एक दिन काम करोगे उससे ज़्यादा दौलत कमाओगे इंशाल्लाह, बेहतर नेम ब्रांड की चक्कर में सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मज्जा। तो इंसान जो है चाहता क्या है, जैसे ही देखा दूसरे घर को देखा फौरन ही कॉपी की कोशिश की। शहजादी कौन है, खुद शहजादी कौन है, कुफ वे अली, किसको कहते हैं कुफ, सूट ऑफ अली, सूट के माने क्या है, हम पल्ला, यानी जो फजाइल अली के हैं वही फजाइल फातिमा की, जो कुव्वत अली के पास है विलायत की वैसी ही कुव्वत फातिमा के पास। लौला अलीयुन लम यकुन लिफातिमा कुफ, अगर अली ना होते तो फातिमा का हम पल्ला कोई नहीं था, पूरे फजाइल में हर चीज में शहजादी। ठीक, शहजादी काम बहुत हो गया, अगर मेरी बेटी आए, मेरे पास पांच बेटियां, खुदा आपके पास भी औलाद रखे इंशाल्लाह सही सालम दीन की सलामती के साथ और बेहतरीन उनका बर भी हो जाए, उनकी शादियां हो, आबाद रहें, खुश रहें, मगर याद रख लीजिए बच्चों को तरबियत कीजिए दीन, बेहतरीन इंजीनियर बनाइए बेहतरीन नमाजी भी बनाइए, बेहतरीन डॉक्टर बनाइए बेहतरीन नमाजी भी बनाइए, दीन से अलग कर देंगे तो हमारी हालत अच्छी नहीं रहेगी, अल्लाह खुदा ना खास, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कोशिश हो रही है करते जाइए। दीनदारी बहुत लाजिमी है। शहजादी कौनैन आती हैं, बाबा बहुत काम हो गया, अगर मेरी बेटी आए, आई हैव लॉट ऑफ वर्क बाबा नाउ इट इज, तो मैं पूछूंगा घर में वॉशिंग मशीन है कि नहीं है, जी है ना भी है तो सही, व्हाट डू यू नीड एट होम, मदद क्या लिए। जब घर में काम ज्यादा हो गया तो क्या पूछें, उसका हल क्या है, बाबा काम ज्यादा हो गया है मुझे एक हेल्पर की जरूरत है, सीधी सीधी बात है। लेकिन जो रेमेडी दी जा रही है बहुत खूबसूरत है, ये मैं जितना पढ़ने जाता हूं मैं समझ में नहीं आता कि बेटी आई है कह रही है काम ज्यादा हो गया है, रसूल अकरम जो दवा दे रहे हैं काम से रिलेटेड ही नहीं है। फातिमा

वलिद वलम यूलद, ना ही वो बाप है ना ही वो किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जो सूरह तौहीद है उसका खुलासा है सुभान अल्लाह। तवज्जो के तमन में समझ में आ रहा है, अगर सूरह तौहीद को जिस करें एक नुक्ते में लाएं, उस नुक्ते का नाम है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह के माने क्या है? बाबरकत है वो जात। जब कभी हालात परेशान हो जाए, तस्बीह है फातिमा जहरा, खुद एक रेमेडी है। खुद तस्बीह का पढ़ना खुद जो है यानी अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं एक ऐसी दुनिया की तरफ जो नजर नहीं आती। उस एनर्जी से मिलने के बाद आपको किसी और एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। सलवात पढ़िए। जंग में क्या होता है? डिस्प्ले ऑफ वेपन। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। साउथ इंडिया में हमारे ही अकीदे का आदमी हैदर अली खान का नाम सुना है ना, सबसे पहले उन्होंने जंग में मैसूरी रॉकेट को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले हिस्ट्री में जो 5 मीटर तक दूर जाकर के गिरा था, तो डिस्प्ले हुआ था। उसका नाम ही अभी हाल ही में शिमोगा एक शहर है कर्नाटक में, एक कुएं से वो खोल मिला है जिसमें वो मैसूरी रॉकेट का खोल मिला है, और बहुत तहकीक हो रही है उसके बारे में। अब तक उनके पास नहीं मिला था, मिला है। और दूसरी चीज़ ये खसूसियत है, इस्तेमार और इस्तिस्मार से लड़ने की कुव्वत सिवाय आपके किसी में नहीं है। कह गया जुमला कहने की ज़रूरत है, यानी कॉलोनाइजेशन से अगर लड़ता है तो या अली लड़ता है या अली वाले लड़ते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर भी वही वो क्या है, आयरन डोम। ओहो आयरन डोम क्या है? हमारे पास आयरन डोम है, कितने भी तुम मारो हम बच जाएंगे, हमारे पास बिल्कुल सहारा है हमारा। यानी उस वक्त भी अच्छी खास बात मैंने देखा, एक उनका रबाई जो है उनका एक प्रीस्ट, यहूदियों का प्रीस्ट, सामने किताब लेकर के पढ़ रहा था, सबसे लड़ो ईरान से नहीं लड़ो, सबसे लड़ो ईरान से मत लड़ो, सबसे लड़ो ईरान से नहीं लड़ो। वही बात है बेटा, सबसे लड़ो हैदर से। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबके सामने कामयाब हो जाओगे लेकिन कभी इनके सामने कामयाब नहीं होंगे। दरे खैबर क्या है? वो आयरन डोम है भाई। उस जमाने उन्होंने बिल्कुल रखा था कि इससे ज्यादा बड़ी कुव्वत नहीं है, 40 आदमी खोलते हैं, 40 आदमी बंद करते हैं, इसको कोई खोल नहीं सकता। अली ने 2 उंगलियों से तलवार पड़ी है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजल फरज, ये दीन है, दीन है। अगर दीन है तो अब मौला अमीर मोमिनीन की एनर्जी वगैरह का सिलसिला से पूछें, खुद मौला से पूछें। भला तो बाबा खैबर इन ला बेकुवत इंसानिया बल बेकुवत रब्बानिया। ये जो 40 आदमी खोलते बंद करते थे इस दरवाजे को, मैंने जो उखाड़ा है ये इंसानी कुव्वत नहीं है और रब्बानी कुव्वत है। अभी रहबर ने इस जंग के बाद एक जुमला कहा है, जंग में कामयाबी इसलिए नहीं है कि हमारा अच्छा वेपन था। तो क्या है जंग में कामयाबी? ये हमारा विल था, हमारा इरादा था, हम कर सकते हैं करके बताया। तो सबसे बड़ी कामयाबी उस इरादे की कामयाबी, खुदी को कर बलन इतना कि हर तकदीर से पहले। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये वाकयात, ये तमाम चीज़ें इंसान में एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, वो कभी नेगेटिव थॉट्स को सामने नहीं लाते। हम लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं तो क्या करते हैं, इतना दिल घबराने लगता है। लेकिन जिसके पास कारबला वाले हों उसको परेशानी क्या है? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक बीबी जिसके घर से निकलने के लिए मौला अमीर मोमिनीन फरमाते थे कि हसन हुसैन

0: उम्मीद है आपका सफ़र अच्छा गुजरा होगा सरदार।
1: सब कुछ ठीक ठाक है इब्न उमर।
0: सरदार की मेहरबानी से अच्छे हैं।
1: जोधा की क्या खबर है?
0: मैं खबर नहीं, हसन इब्न अली के घर और दारुल खिलाफा के दरमियान आता जाता रहता हूँ और इस लड़की को तसल्ली देने की कोशिश करता हूँ। वो अपने बाप के मरने के बाद बहुत गमजदा है।
1: क्या अब भी वो अपने इरादे पर कायम है?
0: कभी मुसम्मम इरादा रखती है और कभी नहीं। एक दिन राजी हो जाती है और अगले दिन पशेमान। अगर अमीर की इनायत और इत्मीनान बख्श वादा हो तो काम हो जाएगा।
1: इत्मीनान बख्श वादा।
0: ये क्या हो गया है?
2: खुदा रहमत करे उस पे। एक बड़ा सरदार था, आज दारुल खिलाफा आया हुआ था और उसने वही जान तोड़ दी।
0: बताओ सच बात क्या है, हकीकत में क्या हुआ है इसके साथ? अभी 1 घंटा पहले जब हसन इब्न अली के घर से बाहर निकला तो बिल्कुल ठीक था।
2: इससे ज्यादा इसकी उम्र नहीं थी, उम्र ने इसे बूढ़ा कर दिया। कुछ शहद का शरबत पिया था और तुम जानते हो कि शहद का शरबत क्या बला है। दमिश्क से भेजा गया शहद हर एक तो हजम नहीं कर सकता।
0: खासकर दमिश्क का भेजा शहद हो तो। हंस
3: रहे हो? अगर उमर
2: ये
3: इस साथ
2: कौन है?
3: देखेगा कि तुम
2: ध्यान
3: उसकी
2: रखो,
3: बाप की
2: ये
3: मैयत पर हंस
2: उम्मेज़ीद
3: रहे
2: है,
3: हो तो वो क्या
2: उम्मेज़ीद।
3: सोचेगा? सोचो उसके जहन में कैसी गलतफहमी पैदा हो जाएगी।
0: सलाम हो उम्मे यजीद पर, मादरे फरजंद खलफ अमीर अल मोमिनीन।
3: और मुस्तकबिल के इस्लामी ममालिक के फरमान रवा।
0: उम्मीद है।
3: तुम्हारी उम्मीद की कोई ज़रूरत नहीं, ये बात यकीनी है। तुम इब्ने उमेर हो?
2: जी बानो,
3: तुम्हारी इसलिए ज़रूरत है कि जिम्मेदारी को अच्छी तरह अंजाम दो।
0: बानो मैं कोशिश कर रहा हूं।
3: ये काफ़ी नहीं, मैं तो सिर्फ जोधा और तुम्हारे काम पर नज़ारत के लिए आई हूँ। उसका क्या हाल है?
0: नहीं कहा जा सकता कि तैयार है, लेकिन अगर अमीर की इनायत और उनका वादा हो तो उसको फैसला करने में मदद मिलेगी।
3: अमीर की बात मैं खुद ही उस तक पहुंचा दूंगी। तुम उसे यहां ला सकते हो?
0: नहीं, यहां नहीं आएगी।
3: तो क्या मुझे हसन इब्ने अली के घर ले जा सकते हो?
0: आपको
3: जरूरी नहीं है कि कोई जाने, किसी को खबर किए बगैर।
0: मेरा बाप कहाँ है?
1: तुम्हारा बाप मुझसे महवे गुफ्तगू था, इसी असना में उसे सांस लेने में जरा दुश्वारी महसूस हुई और शदीद दर्द का एहसास किया। इससे पहले कि तबीब उसके सराहने पहुंचे उसने अपनी जान दे दी।
0: तुमने मेरे बाप को मार डाला।
1: फालतू की बात मत करो, मालूम है कि बाप की जुदाई बहुत सख्त हुआ करती है, लेकिन
0: मुझे यकीन है तुम लोगों ने उसे जहर दिया है।
1: तुमने खुद देखा कि उसने हमारे खाने को हाथ तक नहीं लगाया।
3: अलबत्ता मैं तुम्हारी कुछ बातों को एहतमाल देती हूँ। हो सकता है कि सरदार बुजुर्ग अरब मसमूम हो गए हों, लेकिन यहाँ नहीं। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा बाप आखिरी बार किसके घर गया था।
0: सनीब नली कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम लोग हो जो लुमड़ी की चाल चलते हो और कुत्तों की तरह पीछे से हमला करते हो।
2: ए पिसारे साहब, देखो किससे बात कर रहे हो।
0: बकवास बंद करो इब्ने जिलजोशन। मेरा बाप जब इस महल में आया था तो बिल्कुल सही सलामत था और अब मर गया है। मैं तुम लोगों को उसकी मौत का जिम्मेदार समझता हूँ और मैं सबको बताऊंगा तुम लोगों ने किस तरह से उसे कत्ल कर दिया।
3: रोक लो उसे, यहां से जाने ना दो। समझते हो कि तुम्हें इस महल से जिंदा जाने दूंगी ताकि फितना बरपा करो और लोगों को अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ भड़काओ? साद इब्ने अबी वकास खुद अपनी मौत मरा है। वो हद से ज्यादा दुनिया में जी चुका था और अब इसकी उम्र तमाम हो

0: तुम सबसे यही कहोगे, वरना तुम और तुम्हारे बाप को एक ही जगह दफन कर दूंगी।
1: ये कौन है जो मुझसे इस तरह बात कर रही है?
2: ये बानु अगरामी उम्मे यजीद है, जिनके दामन बुरुतूफत में यजीद इतने माविया ने तरबियत पाई है।
1: मुझे माफ कीजिए उम्मे यजीद, मेरे बाप की अचानक मौत ने।
0: मैं समझती हूँ इब्ने साद, लेकिन इंसान को हमेशा अपनी अक्ल पे काबू रखना चाहिए इब्ने साद, और अपनी भलाई और मसलहत नजर में हो। इब्ने साद, भूलना नहीं कि उसके दफन से पहले तुम सबसे कहोगे कि उसके मरते वक्त तुम खुद मौजूद थे और अपनी आंखों से उसे अचानक दम तोड़ते देखा। समझ गए?

0: तुम्हें मुझसे कोई काम है?
1: हाँ,
0: ये औरत कौन है?
2: मुझे नहीं पहचानती।
0: नहीं,
2: मुझे उम्मे यजीद कहते हैं।
0: उम्मे यजीद?

0: जिसके बारे में मशहूर है कि वो माविया का दरबार चलाती है।
1: ये ऐसी बात है जो दुश्मन कहते हैं। अमीर खुद अपने दरबार पर हाकिम है, शक न करो।
0: इस घर में क्यों आई हो?
1: इसलिए कि अमीर की इनायत और वादे की तुम्हें खबर दूं।
0: मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं ये काम नहीं करूंगी।
2: जोधा, होशियार रहो। ये अमीर अल मोमिनीन की जानिब से तुम्हारे साथ बात करने आई हैं।
1: ये जान लो कि माविया सारे आलम का खलीफा और जानशीन पैगंबर है। वो जो चाहता है ऐन इस्लाम है। जो अमीरुल मोमिनीन मुआविया के रास्ते पर नहीं, वो हक से दूर है।
2: तुमने उसकी ख्वाहिश कबूल करके खुद को शैतान से दूर और खुदा के करीब कर दिया है। अपने बागी और सरकश नफ्स को महार करो। ऐसा ना हो कि बातिल अफकार और कल्बी लगाओ तुम्हें खुदा से दूर करने।
0: नहीं, मैं नहीं कर सकती।
1: अमीरुल मोमिनीन के फरमान को ना ठुकराओ।
2: बेटी, तुम्हारी भलाई इसी में है।
1: यजीद तुम्हारे विसाल से राजी है और अमीरुल मोमिनीन ने भी इस विसाल का वादा किया है और हुक्म दिया है कि सोना चांदी बहिष्टी बाग जो तुम चाहो तुम्हारे नाम लिख दूं।
2: वो बादशाह तुम्हारी तलब में है कि जिसके हाथ में खुदा ने दुनिया के तमाम खजानों की चाबी दे दी है। वो खुदा के जिसने तुम्हारी किस्मत में दुनिया के तमाम औरतों की सरदारी लिख दी है। उस दिन जब अबा मोहम्मद अबल हसन के जानशीन थे तो तुम उनके घर गई, और आज जब यजीद तख्त खिलाफत की जानिब बढ़ रहा है तो तुम उनके घर जाओगी।
1: तुम्हें अरब की औरतों की सरदार होना चाहिए। लड़की, इस सितारे को तुम्हारे लिए आसमान से लिया है, उसे ठुकराओ नहीं। शक ना करो।
0: मैं कैसे यकीन कर लूं?
1: किस चीज का?
0: यही कि अमीर अपने वादे का पाबंद रहेगा।
1: क्या चीज तुम्हें मुतमईन करेगी?
0: नहीं मालूम, मेरे बाप ने कहा कि वो अमीर का दोस्त और हम पैमान हैं, और अमीर ने कभी उनके साथ बदअदी नहीं की, लेकिन अब तो वो मर चुका है।
2: अगर अमीर रस्मी तौर पर वादा तुम्हें लिख कर दे दे तो तुम कबूल करोगी?
1: इब्ने उमर।
0: हाँ, तहरीरी तौर पर अहदनामा लिखा जाना चाहिए।
1: कोई अहदनामे की जरूरत नहीं। तुम्हें मेरी बात पर एतमाद करना होगा और अभी फैसला करो।
0: जब तक तहरीरी अहदनामा नहीं होगा, मैं कोई काम नहीं करूंगी।
1: ये काम देर या सवेर अंजाम पा जाएगा, अच्छी तरह सोच लो, खासकर अपनी किस्मत के बारे में। फिर उस दिन अमीर अल मोमिनीन की रहमत और उनके लुत्फ की उम्मीद ना रखना। लेकिन अगर तुम अभी इस काम के लिए राजी हो जाओ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें अपने बेटे यजीद की बीवी के उनवान से अमीर के दरबार में ले जाऊंगी और अपनी हिमायत में रखूंगी। अब तुम जानो।
2: तुम बेफिक्र रहो। इससे पहले कि तुम कुछ भी करो, मैं उम्मे यजीद से लिखा हुआ अहदनामा ले लूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं।

0: क्या कोई हादसा पेश आया सरदार जो मुझे इतनी रात को बुलाया है?
1: मैं खुद भी तुम्हारी तरह बुलाया गया हूं। बानो उम्मे यजीद ने हम दोनों को तलब किया है।
2: मैंने किसी को इब्ने उमेर के पास भेजा है, लेकिन उसके आने से पहले मैंने सोचा कि तुमसे अपना मतलब वाज़े कर दूं। मैं काफ़ी देर से यहाँ टहल रही हूँ और इस मौजू पर सोच रही हूँ। आज जब मैंने जोदा से बात की तो ऐसा महसूस हुआ कि वो हमारी मुराद पूरी करने पर मुकम्मल आमादगी रखती है, सिर्फ फैसला नहीं कर पाई। इसलिए मैंने गौर किया कि अगर उसे कोई सख्त चोट लगे तो घबरा के जल्दी ही फैसला कर लेगी।
1: कैसी चोट बानो?
2: उसके बाप की मौत के बाद कौन उससे ज्यादा करीब है?
0: और इब्ने उमैर?
2: ठीक है, अब फर्ज करो कि इब्ने उमैर के साथ कोई हादसा पेश आ जाए।
0: कैसा हादसा?
2: वही हादसा जो अशस को पेश आया था, या साद इब्ने अबी वकास के लिए।
0: उसे मार डालें?
2: कोई मुश्किल है?
0: इब्ने उमैर हमारे दोस्तों में से है।
2: क्या तुम अभी तक अपने गुज़श्ता दोस्तों के वफादार हो? तुम्हें सिर्फ अमीरुल मोमिनीन का वफादार होना चाहिए। तुम्हारी नजर क्या है सरदार?

0: क्या आपको नहीं लगता कि जोधा हमें उसकी कत्ल का जिम्मेदार ठहराए और हमारी बात मानने से इनकार कर दे?
1: मुमकिन है हमें मुकसर जाने, लेकिन वो सरपेची नहीं करेगी। वो इक्तदार पसंद और जाह तलब औरत है, लेकिन उसके बावजूद बुजदिल भी है। उससे मैंने कहा कि ये मौतें उसी तरह होती रहेंगी जब तक देर या सवेर उसकी नौबत भी आ
0: कैसे
1: जाए।
0: आपने उसे मेरे
1: बहुत डरी हुई है और अब तक
0: नहीं। क्या वाकई ऐसा?
1: ये शहद का शरबत इब्ने उमेर के लिए है, ध्यान रखो।

0: जोधा मौत की वहशत अपने तमाम वजूद में महसूस करना चाहिए, उस वक्त पक्का फैसला कर लेगी। जबकि मैंने उससे ये भी वादा किया है कि यजीद की बीवी बन जाएगी, और मेरा ख्याल है कि ये वादा कारसाज होगा।
1: क्या वाकई आपका ऐसा इरादा है बानू?
0: नहीं, हरगिज नहीं। क्या मैं अपने बेटे के लिए ऐसी औरत लाऊंगी जो पहले से अपने शौहर के कत्ल करने का तजुर्बा कर चुकी हो? अच्छा कहो, तुम्हारी नजर क्या है?
1: अगर बानो उम्मे यजीद यही चाहती हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है।
0: हाँ, मसलहत तो इसी में है। मेरी नजर में फिलहाल इस औरत को राजी करने का यही तरीका है।
2: इब्ने उमर आना चाहता है।
0: उसे आने दो।
1: उससे कहो कि अंदर आए।
3: मैं समझा कोई हादसा हो गया है जो इतनी रात गए मुझे तलब किया है। जाहिरन कोई जश्न बरकरार है और उम्मे यजीद की मुझ पर भी इनायत हुई है।
0: हाँ इब्ने उमेर, सोचा कि ये बात अच्छी नहीं होगी कि हम लजीज खाने खाएं और हमारे दोस्त इन लजीज ग़िज़ाओं से महरूम रह जाएं।
3: मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुस्तकबिल के खलीफे की महबूब माँ का साया हमारे सरों पर बाकी रखेगा।
0: पियो इब्ने उमेर, ये शहद का शरबत बहुत मज़ेदार है।
3: यह शरबत वही शरबत नहीं जिसने कल रात साद इब्न अबी वक्कास को हलाक कर दिया?
0: हाँ, उसी शहद का है।
3: शिमर ने तो कहा था यह बहुत ताकतवर शहद है और साद इब्न अबी वक्कास का कमजोर जिस्म इसको बर्दाश्त ना कर सका। अब मेरी अजीज बानो बताइए कि आप क्या समझती हैं कि मेरा ज़ईफ़ और अलील जिस्म इसको बर्दाश्त कर पाएगा?
0: हाँ, इत्मीनान रखो, हजम कर सकते हो, तुम्हारे मिजाज के मुताबिक है।
3: बानों में मर के गिर तो नहीं पड़ूंगा ना।

0: नहीं डरो, मगर उस सूरत में कि अमीरुल मोमिनीन के दुश्मनों से मिल जाओ, वरना ऐसी सूरत में बेखौफ मैं खुद तुम्हारी जान लूंगी।
1: माज़ल्लाह, खुदा न करे अगर ऐसा दिन आ जाए तो बेशक मैं अपने इन्हीं हाथों से इसी तरह जामे जहर पी लूंगा।

0: अभी तक कोई खबर नहीं आई बानो।
1: ठहरो, सब्र से काम लो। क्या हुआ इब्ने जिलजोशन, परेशान लग रहे हो?
2: नहीं, मैं परेशान नहीं हूं।
1: क्यों नहीं हो? तुम शायद इस फिक्र में हो कि देर या सवेर तुम्हारा भी यही हश्र हो सकता है। क्यों, कोशिश करो कि तुम खुद को इस फिक्र से निजात दो, वरना सुकून नहीं पाओगे।
2: बरसों से मैंने सुकून नहीं पाया है।
1: मैंने सुना है कि अबा मोहम्मद के साथी बड़ी आसानी से मौत का इस्तकबाल करते हैं और मौत से डरते नहीं हैं। क्या ये सही है?
0: ऐसा ही है, मैंने खुद बारहा ये देखा है।
1: जानते हो इसकी वजह क्या है?
0: मैं माफी चाहता हूं बानो, उस वजह को मैं तन्हाई में अपने जहन में दोहराता हूं।
1: यही कि वो लोग ईमान रखते हैं और तुम नहीं रखते, सही है? लिहाजा हमें भी अपना ईमान कवी करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि उन्हें शिकस्त दें, तो हमें भी उन्हीं की तरह ईमान रखना होगा।
2: ईमान किस चीज पे?
1: किस चीज पे? अमीरुल मोमिनीन और उसके फर्जंद यजीद पर। क्या ये दोनों तन्हा हमारा सहारा नहीं है?
2: मैं ज्यादातर अमीर की इनायत पे ईमान रखता हूँ।
1: फिर तो तुम्हें सख्त दिन का सामना करना पड़ेगा शिम्र, हमेशा अजाब में रहोगे। खौफ वो वहशत वो हैरानी तुम्हें कभी चैन से नहीं छोड़ेगी। जानते हो क्यों? इसलिए कि अमीर की इनायत मुख्तलिफ शक्ल में जाहिर होगी, कभी जेवर की शक्ल में, कभी दौलत की शक्ल में, कभी हुकूमत की शक्ल में, और कभी उस शहद के कालिब की शक्ल में जो इब्ने उमेर ने पिया था।

इब्ने उमेर कैसे मर गया? क्या तुमने उसे मारा है? तुम अपनी जिंदगी की फिक्र करो, मौत तो देर या सवेर सबको आनी है। इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, कोशिश करो कि जिंदगी से फायदा उठा लो। मुआविया के महल की सोचो, यजीद की बीवी बनने की फिक्र करो। मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है।

0: अब इससे ज्यादा गौर और फिक्र करना मुनासिब नहीं है जोधा।
1: ये काम मैं नहीं कर सकती, मैंने अपना इरादा बदल डाला है। चाहे तुम मुझे कुछ भी दे दो, यजीद की बीवी भी अगर बना डालो, मैं ये काम नहीं कर सकती।

0: मैं तुम्हें हकीकत बता दूं बानो, मेरा ख्याल है कि शायद वो ये काम नहीं कर सकेगी।
1: तुम वापस जाओ, मैं यहीं मुंतजिर रहूंगी।
0: मुंतजिर किसकी?
1: ऐसी चीज की मुंतजिर जो तुम्हारी निगाह में गैर मुमकिन है।

0: तुम किसी चीज़ की फिक्र ना करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब तुम जाओ मेरी बेटी। जानते हो ये औरत कौन थी? जोदा।
1: कौन जोदा?
0: अशस की बेटी और हसन इब्ने अली की बीवी।
1: वो दारुल हुकूमत आ गई?
0: हाँ, मेहमान थी।
2: कैसे आपने उसे मेरे घर आने पर आमादा कर लिया बानू? ये काम तो अशस भी ना कर सका।
0: मुझे अशस के बराबर समझते हो? अब तुम जाओ और अपने आप को तैयार कर लो उस खबर को सुनने के लिए जिसका मुद्दत से इंतजार था। आखिरकार जोदा तस्लीम हो गई है और हसन इब्ने अली के कत्ल के लिए तैयार है।
2: क्या वाकई ऐसा है?
1: वो राजी है?
0: हाँ राजी है। अब जल्द ही बनी हाशिम आजादार होंगे। अब जाओ और उस वक्त के लिए तैयार हो जाओ। समझ गए? मेरी राय है कि मुगैरा और बुसर से, जो कूफा व बसरा के हाकिम हैं, उनसे मदद लो। मुमकिन है कि हसन इब्ने अली के तरफदारों से जंग पर मजबूर हो जाओ।

0: मैं ये काम नहीं कर सकती, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती।
1: मैं और तुम्हारा बाप मुआविया के करीबी लोगों में
0: नहीं, मैं ये काम नहीं
1: ने तख्त खिलाफत खून के दरिया से इसलिए हासिल नहीं किया कि एक चमड़े के अहदनामे की खातिर किसी के हवाले कर दें। मुआविया के बाद
0: मैं ये काम नहीं,
1: यजीद ही तख्त खिलाफत पे बैठेगा।
2: यजीद तुम्हारे विसाल से राजी है
0: और
2: अमीर المومنین ने भी इस विसाल का वादा किया है
0: और हुक्म
2: दिया है कि सोना चांदी बहिश्ती बाग जो तुम चाहो तुम्हारे नाम लिख दो।
0: मैं ये काम नहीं कर सकती।
1: वो बादशाह तुम्हारी तलब में है कि जिसके हाथ में खुदा ने दुनिया के तमाम खजानों की चाबी दे दी है।
0: नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, ये काम मेरे बस का नहीं। नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती। नहीं नहीं
2: ये काम देर या सवेर अंजाम पा जाएगा।
0: मैं ये काम नहीं,
2: अच्छी तरह सोच लो।
0: नहीं,
2: खासकर अपनी किस्मत के बारे
0: में। कर सकती।
2: फिर उस दिन अमीर المومنین की रहमत और उनके लुत्फ की उम्मीद ना रखना।
3: इब्न उमर,
0: मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं ये काम नहीं कर सकती।

0: लगता है कि काम तमाम कर दिया है।
1: बानो, बानो मुझे छोड़ दे, मैं ये काम नहीं कर सकती, ये काम मेरे बस का नहीं है बानो, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है बानो मुझे छोड़ दे, मैं ये काम नहीं कर सकती बानो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे।
2: माविया के महल का सोचो, यजीद से शादी का सोचो।
1: मैं डरती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती।
2: तुम्हें ये काम करना पड़ेगा जोधा।

हम तुम्हारे इंतजार में हैं। समझा करो, डरो नहीं, हिम्मत से काम लो, अपने आप को संभालो। क्यों इतना घबरा रही हो जोदा? यजीद का सोचो, माविया के महल का सोचो और यजीद से शादी का सोचो। तुम अरब की औरतों की सरदार हो जाओगी। क्यों रो रही हो? महल की अय्याशी का सोचो, कैसी जिंदगी गुजारोगी वहाँ।

0: देखो हुजर इब्ने आदि और आदि इब्ने हातम मजमे के आगे आगे चले आ रहे हैं।
1: कहां जा रहे हैं?
0: मदीना।
1: मदीना? मगर मदीने में क्या हुआ है?
0: नहीं जानता, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूं कि क्यों मरवान ने हमें इतनी उजलत के साथ मदीना में बुलाया है और क्यों ये लोग इतने इश्तियाक से मदीने की तरफ रवाना हुए।
1: अच्छा बताओ क्यों?
0: मेरा ख्याल है कि अबू सुफियान के बेटे का फरमान नाफिज हो गया है।
1: कौन सा फरमान?
0: हसन इब्न अली या कत्ल हो चुके हैं या इहतजार के आलम।

0: सरदार है बुजुर्ग, मेरा ख्याल है कि हमें अपनी तलवारें उठा लेनी चाहिए।
1: ये औरत कौन है?
0: ये वही औरत है जिसने हसन इब्न अली को जहर दी है। हसन इब्न अली की बीवी है।
2: उसे अपने हाल पे छोड़ दो। बुसरे इब्ने अर्ताद कहाँ है?
3: रास्ते में है,
2: तुम्हारे सिपाही कहाँ हैं?
1: शहर दमिश्क के बाहर।
2: उम्मीद है कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एहतियात से मुंतजिर रहो। मुमकिन है कि टकराव से बचना मुश्किल हो। अगर हसन इब्ने अली के साथी तलवार उठा लें तो तुम भी देर ना करो, तलवार का जवाब तलवार से दो।
4: ये वही इत्तेफाक है

का बोझ लेकर, बुराइयों का बोझ लेकर इस दुनिया से जाता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी नापाक हो जाती है। और आखिरत में उसकी जज़ा क्या है? वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम जज़ा देंगे, पूरी ताकीद के साथ वो खुदा कह रहा है कि हम जज़ा देंगे। कैसी जज़ा? अमल से बहुत बेहतर जज़ा। वो खुदा ही जानता है कि वो बेहतर कितना बेहतर है। अजीज़ों, हमारी गुफ्तगू हो रही थी हयात तैयबा, पाक ज़िंदगी, तैयब व ताहिर ज़िंदगी, जिसके बाद इंसान को कोई गम व अंदूह ना हो, कोई परेशानी ना हो, ना खौफ हो, ना हुज़्न हो। ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी कब मयस्सर होगी? जब ईमान और अमल सालेह दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी। देखिए, हयात तैयबा के लिए एक बेहतरीन चीज़ हमारे पास जो खुदा की तरफ से मौजूद है, वो अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद, कि जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो यकीन जानिए हमारी ज़िंदगी पाक हो जाएगी। ये अल्लाह का कलाम है, नूरानी कलाम है। इसकी खासियत ये कि अगर आप ज़बान से, जिस ज़बान से ये कलाम पढ़ेंगे, वो ज़बान भी नूरानी हो जाती है। दिल में आप हिफ्ज करेंगे तो दिल भी नूरानी हो जाता है। अगर घर में तिलावत करेंगे तो आपका घर भी नूरानी हो जाता है। इतना नूरानी होता है, हदीस में है कि जिस घर में, पूरी अच्छी तरह से सुनिएगा, जिस घर में कुरान मजीद की आयतों की तिलावत होती है, वो घर इतना नूरानी होता है कि आसमान वालों के लिए सितारे की तरह से चमकता है। वो घर नूरानी हो जाता है, ऐसा नूरानी होता है कि आसमान वालों के लिए वो सितारा, जैसे ज़मीन वालों के लिए वो आसमान के सितारे हम रोज़ाना रात में देखते हैं ना, ये घर जिसमें कुरान मजीद की तिलावत हो, वो घर इतना नूरानी हो जाता है। जिस घर में तिलावत हो वो घर इतना नूरानी, जिस घर में कुरान नाजिल हो वो कितना नूरानी होगा। नूरानियत चाहते हो तो भी कुरान पढ़ो, और अगर अपनी ज़िंदगी को पाक व पाकीज़ा बनाना चाहते हो तब भी कुरान पढ़ो। इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, पाक कलाम है, तैयब व ताहिर कलाम है। इसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगी भी पाक व पाकीज़ा हो सकती है। अगर शिफा चाहते हो, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से इंसान का जिस्म बीमार होता है, उसी तरह से रूह भी बीमार होती है। हम जिस्म की बीमारियों से आशना हैं, रूह की बीमारियों से आशना नहीं है। रूह भी बीमार हो जाती है, हमें खबर नहीं है, हमने कभी इलाज का सोचा नहीं है, उसके पीछे गई नहीं है। कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत हो जाती है, उठते बैठते बिला वजह झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि ख्वाब में भी झूठ बोलते हैं। ये बीमारी सी है, इंसान के रूह में लायक हो जाती है। हसद बीमारी है, इंसान के रूह में आ जाती है। गीबत एक बीमारी है, ये रूहानी अमराज है, इसका इलाज है। गुस्सा एक बीमारी है, इसका इलाज है। बच्चा बीमार हुआ, माँ बाप परेशान, पूरी रात परेशानी में गुजारते हैं, भागते भागते हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर के पास, बच्चा बीमार हो गया, बीमारी में मुब्तला हो गया, घर में परेशानी आ गई। क्यों? इसलिए कि बच्चा बीमार है। लेकिन जब बच्चा झूठ बोलने का आदि हो जाता है, और ये बात भी याद रखिएगा, बच्चा बाहर से झूठ नहीं सीखता, घर से ही सीखता है। जब वो देखता है कि घर में बड़े जो है वो झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा भी बोलने लगता है। तो जब बच्चा आपका बिगड़ जाता है, खुदा ना खास्ता ज़िद्दी हो जाता है, गुस्से में ज़्यादा हो जाता है, या खुदा ना खास्ता हसद करने लगता है, या कोई बीमारी, बुरी बीमारी का शिकार हो जाता है, तो आपको ये एहसास नहीं होता कि इसका भी इलाज है। जिस्मानी डॉक्टर हैं तो रूहानी डॉक्टर भी हैं। इसलिए आप जाकर देखें, ईरान में मौलाना को क्या कहते हैं मालूम है? रूहानी कहते हैं। जो भी उलमा होते हैं ना, मौलाना लोग, उनको ईरान में रूहानी, इसलिए कि ये वो है जो रूहानी बीमारियों का इलाज करता है। हमारे पास बाकायदा तौर पर एक सब्जेक्ट है, रूहानी बीमारियों का इलाज। कैसे?

जो कहा गया कि वो हमसे गायब हैं, दिखाई नहीं देते, पर्दा उधर से नहीं, पर्दा इधर से है, इन हमारी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, हमारी आंखों में ये ताब नहीं कि इमाम के जलवे को देख सकें। जब हमारी आंखों में इतनी ताब नहीं कि हम सूरज को देख सकें जिसके सदक़े में सूरज पैदा हुआ है, वो नूर कुल है, उसे हम देखकर ताब क्या ला सकते हैं। जिस दिन हमने अपने आंखों को पाक कर लिया, अपने वजूद को पाक कर लिया, अपनी ज़िंदगी को तैयब व ताहिर बना लिया, देखिए पर्दे चाक होते चले जाते हैं और इमाम का जलवा नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में कितने सैकड़ों और हज़ारों उलमा गुजरे हैं जिन्होंने बराह रास्त इमाम से मुलाकात की है। ये कब मुलाकात मुमकिन है? जब आपकी ज़िंदगी तैयब व ताहिर हो जाएगी, सारे हिजाबात ख़त्म हो जाएंगे, पर्दे हट जाएंगे, तब तैयब व ताहिर ज़िंदगी का फ़ायदा ये है कि आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता फरिश्तों से हो जाता है, फरिश्तों से आपका राबिता, कनेक्शन। फरिश्ते कौन हैं भाई? मलाइका, नूरानी मखलूक हैं, वो हर घर में नहीं आते। बाज़ लोगों की शिकायत होती है हमारे घर में परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। जिस घर में गाना हो, जिस घर में गुनाह हो, परेशानी नहीं होगी तो और क्या होगा? कुरान मजीद के ज़रिए से, इबादतों के ज़रिए से, जिक्र और तिलावत के ज़रिए से अपने घर को इतना पाको पाकीज़ा बना लें कि फ़रिश्तों का आना जाना हो जाए, फरिश्ते आते रहें और जाते रहें। कुरान मजीद के सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 30 खुदावंद आलम फरमाता है कि इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। जो कहते हैं अल्लाह हमारा परवरदिगार है, दिल की गहराइयों से खुदा के वजूद को तस्लीम कर लेते हैं और फिर उस पर जमे रहते हैं, तो उनके लिए क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है? ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, मलाइका का नुज़ूल होता है, उनका राबिता मलाइका से हो जाता है। ऐसा नहीं कि आए और चले गए, नहीं, ततनज़्ज़ल इन्हें एक ऐसा लफ्ज़ है, सिग़े मुज़ारे जारी है, इन्हें उनका आना जारी है, लेकिन ये हर घर में नहीं आते, मखसूस घरों में आते हैं जिसकी ज़िंदगी तैयब व ताहिर हो, हयात तैयबा का नमूना हो, ऐसे घरों में फरिश्ते आते हैं। और अगर जिसकी ज़िंदगी तैयबा नहीं है, हयात तैयबा का वो मालिक नहीं है, तो वहाँ शैतान का आना जाना रहता है। कुरान मजीद का एक एजाज़ ये भी सुनते जाइएगा कि कुरान मजीद में जितनी मरतबा मलाइका का लफ्ज़ आया है, उतनी मरतबा शयातीन का लफ्ज़ भी आया है। 88 टाइम मलाइका और 88 टाइम शयातीन। तो अब हमारा इख्तियार ये कि हम चाहें तो अपना राबिता मलाइका से रखें, हम चाहें तो शैतान से। ये शैतान जो है वो नारी मखलूक है, बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए। जिस घर में शैतान का आना जाना हो, परेशानी है परेशानी है, शैतान सवार हो गया है। शैतान सवार नहीं हो तो और क्या होगा? जब हम अपने आप को बुराइयों में मुब्तला कर लेंगे तो मलाइका कहाँ से आएंगे? शैतान ही तो आएगा। तो ज़िंदगी को पाक व पाकिज़ा बनाना है, तैयब व ताहिर बनाना है, इसके लिए पहली शर्त मैंने अर्ज़ की कुरान मजीद की आयत के ज़रिए से, ईमान। दूसरी शर्त अमल साले, और अमल साले के लिए शर्त है खुलूस। जो अमल आप कर रहे हैं वो सिर्फ़ खुदा के लिए हो, गैर का उसमें तसव्वुर ही ना हो। ये शैतान जो है वसवसे पैदा कर देता है, और रियाकारी ये अमल की आफत है। पहले तो अमल से दूर रखता है, जब इंसान अमल कर लेता है तो रियाकारी उसके अंदर पैदा कर देता है, और इंसान इबादत भी करता है, अमल भी करता है किसी और के लिए, बेकार, सारी इबादतें बेकार चली जाती हैं। ये कितनी बड़ी नुकसान की बात है कि इबादत भी करे और कुछ भी ना मिले, पैसा भी खर्च करे कुछ भी जजा ना मिले। इसी को कहते हैं खसरा दुनिया वल आखिरा। एक शख्स अपने घर से निकला इबादत के लिए, रात के सन्नाटे में मस्जिद का दरवाज़ा खोलकर मस्जिद में दाखिल हो गया, इबादत में मसरूफ़ हो गया पूरी रात, पूरी रात। जब सुबह करीब हो रही थी, एक मरतबा उसने खिड़की से किसी के आने की आवाज़ सुनी। पूरी रात उसने इबादत की है, सजदे पे सजदे, नमाज़ों

पे नमाजें, बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी, अंदर अंदर एक मरतबा खुशी पैदा हो गई कि कोई आया है मुझे देख रहा है। जब वो देखेगा इस हालत में मुझे तो क्या सोचेगा, सुबह जाएगा पूरे शहर में मशहूर कर देगा कि रात में कोई नहीं था, ये अकेला था, इबादत करता रहा, कितना बड़ा नमाजी है, कितना बड़ा इबादत गुजार है, नमाजें भी हो रही हैं, ख्याल भी पक रहा है, खिचड़ी भी पक रही है, ये सब कुछ नमाज ही में हो रहा है। जब एक मरतबा वो नमाज मुकम्मल करके बाहर आया, क्या देखा, वो नजीस जानवर कुत्ता बैठा हुआ था, सर पटकने लगा, अरे मैंने क्या कर दिया, पूरी रात इबादत इस कुत्ते के लिए अंजाम दे दी है। देखिए जहां खुलूस ना हो तो अंजाम क्या है। अगर इंसान खुदा का तस्वूर अपने जहन में ना ले तो सारी इबादतें सारे आमाल बेकार हो जाते हैं। तारीख में एक वाकया है जंगे ओहद का, कि जहां पर एक शख्स मदीने से निकला था जहाद के लिए, जहाद बहुत बड़ा सवाब है, कोई मामूली काम नहीं है, मामूली अमल नहीं है, बहुत बड़ा अमल है, जान का रिस्क है, इसमें रियाकारी बहुत कम इम्कान है। इंसान जो है नमाजें पढ़ के रियाकारी कर ले, रोज़ा रख के रियाकारी कर ले, तिलावत करके रियाकारी कर ले, चंद पैसे खर्च करके रियाकारी कर ले, कोई जो है जान का रिस्क लेके जहाद नहीं करता। इसलिए सदर इस्लाम में मस्जिदों को नमाजी बहुत मिल गए, माह रमज़ान में रोज़ेदार मिल गए, लेकिन मैदान जंग में कोई मुजाहिद ना मिला सिवाय ज़ाते अली इब्न अबी तालिब के। तो मदीने से एक मुसलमान आया है जंगे ओहद में, जंग करने के लिए, लड़ने के लिए दुश्मन के मुकाबिल में। एक मरतबा जैसे ही लड़ने के लिए गया काफिर के मुकाबिल में, उसकी निगाह काफिर के खच्चर पर पड़ गई, जानवर पर पड़ गई, गधे पर पड़ गई। अब एक मरतबा लालच पैदा हो गई, इसको मार दूंगा, ये खच्चर मुझे मिल जाएगा। कबल इसके कि वो काफिर पे हमला करता, काफिर ने उस पर हमला कर दिया, वो मर गया, वहीं ख़त्म हो गया। तो वो पूरे लोगों में मशहूर हो गया, कतीलुल हिमार। ये वो शख्स है कि जो गधे की राह में कत्ल कर दिया गया है, इन अपनी जान दे दी एक जानवर के लिए। अगर खुदा के लिए निकला होता तो खुदा भी मिलता, जानवर भी मिलता, लेकिन चूंकि उसी के लिए निकला था कुछ भी नहीं मिला, जान चली गई। देखिए इंसान जब खुदा से उसकी नीयत हट जाती है तो आलम क्या होता है। अगर तुम पाको पाकीज़ा ज़िंदगी चाहते हो तो अहले बैत से अपने आप को मुतमस्सिक कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी पाक हो जाएगी। हमारे पास बेहिसाब नमूने मौजूद हैं, आपने नाम सुना होगा इब्राहीम मुजाब, पाको पाकीज़ा ज़िंदगी कैसे गुजरी, अहले बैत के साए में। जब कोई अमल इंसान खुदा के लिए अंजाम देता है, सिर्फ खुदा के लिए, इब्राहीम मुजाब, इमाम हफ्तम, इमाम मूसा काज़िम सलवातुल्लाहि व सलामु अलैहि की, सातवें इमाम की नस्ल से हैं। जब आप करबला जाएंगे इंशाअल्लाह तो जब तिले ज़ैनबिया से इमाम हुसैन के हरम में दाखिल होंगे तो इनकी ज़री पहले आती है, इब्राहीम मुजाब, नाम इब्राहीम और उनका लकब हो गया मुजाब। तो उनका कौन सा अमल था जो खुदा को इतना पसंद आया, खुलूस की बुनियाद पर। उनके वालिदैन ज़ईफ़ हो चुके थे, माँ और बाप दोनों कमज़ोर ज़ईफ़। अगर किसी के ज़ईफ़ और कमज़ोर माँ बाप हों और किसी को खिदमत का मौका मिले तो खुदा का शुक्र अदा कीजिएगा, बहुत बड़ा लुत्फ़ो करम खुदा ने मुझ पर कर दिया कि माँ बाप की खिदमत मेरे हिस्से में आ गई। और अगर कोई इंसान बदबख्त होता है ना तो वो माँ बाप की खिदमत से महरूम हो जाता है। माँ बाप का वजूद, वालिदैन का वजूद घर में बाईस रहमत है, बाईस बरकत है। हदीस है, अश्शेखो फिल बैत कन नबी ये फिल उम्मा, घर में बाप या माँ का वजूद ऐसे ही है जैसे उम्मत में नबी का वजूद।
برکتیں آتی ہیں, انبیاء کا سلام آتا ہے, فرشتے

फरिश्ते आते हैं, फरिश्तों का आना जाना रहता है जिस घर में माँ बाप हों। खुदा का शुक्र अदा कीजिएगा अगर घर में माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी खिदमत का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी गनीमत है। इसलिए कि जब इंसान एक मरतबा खुलूस नीयत के साथ बाप की पेशानी का बोसा ले या माँ के कदमों का बोसा ले तो इसी दुनिया में उसे जन्नत की बशारत दे दी जाती है। जन्नत की बशारत कहाँ तलाश कर रहे हो? मस्जिदों में नहीं, बाजारों में नहीं। आओ, जन्नत को तलाश करना है तो बाप की पेशानी में या माँ के कदमों में तलाश करो, जन्नत मिल जाएगी। बहुत बड़ा मर्तबा है माँ बाप की खिदमत का। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं तफसील में अर्ज़ कर सकूँ। तो ये इब्राहीम मुजाब जो है अपने एक हफ्ता एक शब जुमा बाप को अपने पुश्त पर बिठा कर इमाम हुसैन की ज्यारत को ले जाते थे, और एक शब जुमा अपनी माँ को अपने पुश्त पर बिठा के इमाम की ज्यारत के लिए ले जाते थे। कोई आसान काम नहीं है पुश्त पर बिठाना, पैदल चलना। कार में बिठा कर लाने में परेशानी हो रही है हमें। देखिए, एक बेटा भी नाफरमान हो तो क्या हालत होती है। ये इब्राहीम मुजाब अपने पुश्त पर बाप को बिठा के लाते हैं ज्यारत के लिए, और एक शब जुमा अपने माँ को बिठा के लाते हैं। एक मरतबा जब एक शब जुमा अपने बाप को पुश्त पर बिठा के ला रहे थे, जब वो ज़ियारत करके वापस घर में लौटे तो एक मरतबा माँ ने अपनी हसरत से कहा, बेटा मुझे भी ले चलो, मुझे भी तड़प बढ़ गई है, पता नहीं मैं अगले हफ्ते तक ज़िंदा रहूं या ना रहूं। इसलिए नेकी के सिलसिले में कहा गया है कि जब मौका मिले अंजाम दे दो, कल के लिए ना टालो। कल का आना कोई गारंटी नहीं है, कल होगा, हम होंगे या ना होंगे क्या पता। नेकी करने में देर ना करो। माँ कहती है, बेटा मुझे भी ले चलो, मुझे एहसास हो रहा है कि अगले शब जुमा तक मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। ये इब्राहीम मुजाब थके हुए हैं, पुश्त पर बाप को लेकर गए थे और लेकर आए हैं, लेकिन माँ का कहना था, बड़ा फरमा बरदार बेटा था, तैयार हो गया, राज़ी हो गया, अपनी माँ को पुश्त पर बिठा के ले गया। जैसे ही इमाम के हरम के करीब पहुँचा, माँ ने हाथों को फैला दिया, का परवरदिगार तुझे तेरे ख़ास बंदे हुसैन का वास्ता इस मेरे बेटे को पाक कर दे, वैसे बना दे तू जैसे चाहता है। इधर माँ की दुआएं ख़त्म हुई थी, एक मर्तबा इब्राहीम मुजाब ने इमाम के दरवाजे पर पहुंचकर सलाम किया, अस्सलामु अलैक या अबा अब्दिल्ला। माँ पुश्त पर सवार है, जरी है इमाम से आवाज़ आई, अलैक सलाम या इब्राहीम। इतने बुलंद आवाज़ से आई कि जितने हरम में मौजूद थे सब ने इस आवाज़ को सुना, और इसका असर उनकी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में रहा। लोग इंतज़ार करते थे कि इब्राहीम मुजाब आएं हरम में, वो सलाम करें और हम अपने कानों से इमाम का जवाब सुने। देखिए, हम भी सलाम करते हैं, जवाब भी आता होगा, लेकिन सुनने वाले कान चाहिए। जो कान गुनाह सुनने के आदि हो गए हैं, गीबत सुनने के आदि हो गए हैं, झूठ सुनने के आदि हो गए हैं, वो कान में इतनी सलाहियत कान जो इमाम की आवाज़ को सुन सके। इब्राहीम मुजाब जब भी आते और सलाम करते, जितने लोग होते थे सब के सब इमाम के जवाब को सुनते थे। ये माँ बाप के साथ नेकी करने का सिला ये हुआ कि पूरी ज़िंदगी तैयब व ताहिर ज़िंदगी बन गई। आयतुल्लाहिल उज़्मा ए मरशी नजफ़ी के सिलसिले में यही बताया जाता है कि जो कुछ वो थे वो कहते अपनी ज़िंदगी में कि मैं अपने माँ बाप की दुआओं का नतीजा हूँ। माँ ने एक मरतबा अपने घर में दस्तरखान लगा दिया, खाना तैयार कर दिया, बेटे से कहा, बेटा शहाबुद्दीन मरशी, जाओ अपने बाप को बुला कर लाओ। कमरे में दाखिल हुए, बाप को बुलाने के लिए क्या देखा, बाप सो रहा है। माँ कह रही है, बुलाओ, बाप यहाँ आराम कर रहा है, अब मरशी करें तो क्या करें। एक मर्तबा करीब पहुँचे और अपनी पेशानी को बाप के कदमों पर रख दिया। बेदार करना मुनासिब नहीं समझा कि अगर बेदार करूँ तो शायद मेरा बाप नाराज़ हो जाए। अपनी पेशानी को बाप के कदमों पर रख दिया। थोड़ी देर के बाद बाप होशियार हुए, बेदार हुए, क्या देखा, बेटा जो है कदमों में

अपनी पेशानी को रखे हुए फौरन दोनों हाथों को उठाया आसमान की तरफ का, परवरदिगार मेरे इस बेटे को वैसा बना दे जैसे तू चाहता है। शहाबुद्दीन मरशी का वो मकाम व मर्तबा हो गया, मर्जे तकलीद करार पाए बाप के दुआ के नतीजे में। आप अगर तैयब ताहिर जिंदगी चाहते हैं तो माँ बाप की खिदमत वो नेकी है कि जिसके ज़रिए से आपकी ज़िंदगी तैयब ताहिर ज़िंदगी हो जाएगी। बड़ी अकीदत थी इनका, हुसैनिया है, इमाम बारगाह भी थी, बड़े मोहब्बत व इश्क के साथ आज़ादारी हुसैन मनाया करते थे, मजलिस हुसैन घर में बरपा करते थे। जब आज़ादार मजलिस में आ जाते थे तो आप वहाँ खड़े होते थे जहाँ आज़ादार जूतियाँ उतारते थे, दरवाज़े पर खड़े होकर आज़ादारों का इस्तकबाल। ये कैफियत है, बता रहे हैं देखे वो मजलिस हुसैन की अहमियत क्या है उलमा के नज़दीक, मराजे के नज़दीक। इसको मामूली ना समझें, यहाँ आम लोग नहीं आ सकते, यहाँ पर वही लोग आएंगे जिनकी तरफ इमाम की नज़र करम हो, जिनकी तरफ इमाम का दावत नामा पहुँच गया हो, वही लोग हाजिर हो सकते हैं, वरना आ नहीं सकते। बहुत से लोग इरादा तो करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते, रास्ते में रुक जाते हैं, दोस्तों के पास चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। यहाँ आने के लिए तौफीक चाहिए, यकीन जानिएगा तौफीक चाहिए। बड़ी अकीदत से मजालिस और आज़ादारी किया करते थे, और उनकी तीन वसीयतें बहुत ही मशहूर हैं कि उन्होंने वसीयत की थी, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो मेरे गुस्ल कफन के बाद मेरे साथ मेरा वो सियाह लिबास भी दफन किया जाए जो मैं पहन कर मजाली से अज़ा में जाता था। एक वसीयत, दूसरी वसीयत है कि मेरे साथ उस मेरे सियाह रूमाल को भी दफनाया जाए जिस पर मैंने आंसू बहाए थे। एक मखसूस रूमाल अपने लिए रखा था, जब भी वो मजलिस में आते थे उस रूमाल को साथ में लेकर आते थे और उसी में उसी रूमाल में आंसुओं को जगा देते थे। अल्लाहु अकबर, वो रूमाल कितना कीमती होगा, इन आंसुओं को मामूली ना जानिएगा। और तीसरी वसीयत कि जब मेरा गुस्ल कफन हो जाए, मुझे ताबूत में रख दिया जाए, तो हरम मासूमा कुम में मुझे ले जाया जाए और ज़री के पास मेरा ताबूत रखा जाए और मेरे अम्मामे कि एक सिरे को ज़री से और दूसरे सिरे को ताबूत से बांध दिया जाए और उसी जगह पर इमाम हुसैन के रुखसती के मसाइब पढ़े जाएं, रुखसतीय इमाम हुसैन के मसाइब पढ़े जाएं। इसलिए कि इमाम के रुखसती के मसाइब बहुत ही मुसीबत के हैं, कलेजा फट जाता है। बहुत सारे उलमा ने अपनी ज़िंदगी में वसीयत की है कि जब मैं मर जाऊं तो हुसैन इब्न अली के रुखसती के मसाए पढ़े जाएं। एक आलिम दीन के ख्वाब में आकर शहजादी दो आलम ने यही कहा, ए आलिम दीन, क्या तू मेरे बेटे हुसैन के मसाहब नहीं पढ़ता? उसने कहा, शहजादी मैं तो मसाहब पढ़ता हूं, हर एक शहीद के मसाए पढ़ता हूं। कहा, नहीं तू मेरे बेटे के मसाहब नहीं पढ़ता। पूछा, शहजादी वो कौन सी मुसीबत है जो मैं कम पढ़ता हूँ? मेरे बेटे की रुखसती की मुसीबत को तो कम बहुत पड़ता है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा जब मुझे मुसीबत हुई ये उसी वक्त था जब मेरा बेटा कर्बला में एको तन्हा रह गया। जब सब अकरुबा और असहाब शहीद हो गए, बचपन का दोस्त हबीब शहीद हो गया, हुर शहीद हो गए, जुहर कैन शहीद हो गए, सईद शहीद हो गए, यहाँ तक के जवान बेटा अकबर भी शहीद हो गया, अब्बास अलमदार भी शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए, अब फातिमा का लखते जिगर एको तन्हा, कर्बला के मैदान में एको तन्हा कोई नासिर व मददगार नहीं। आखिरी सलाम किया खैमे का रुख कर, या ज़ैनब, या रुकैया, या उम्मे कुलसूम, या फिज़ा अलैकुन्ना मिन्नी अस्सलाम। एक एक बीबी को सलाम किया और उसके बाद उस खैमे में आए जहाँ पर जनाब ज़ैनब रहती थी। कहा, बहना मुझे उस खैमे में ले चलो जहाँ मेरा बीबी

टूट चुके हैं। परवरदिगार इन अज़ादारों में जो भी परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, इन सब की दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगार इस मजमे में मुझे नहीं मालूम किसकी क्या दुआ है, कौन क्या परेशानी रखता है, सब की मुरादों को बरला दे। परवरदिगार दुनिया में ज़ियारत हुसैन और आखिरत में शिफात हुसैन नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह, जो भी बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजल इनायत फरमा, मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा, हम सबको माफ़ फरमा, हमारी ज़िंदगी को तैयब

आओ दोस्त, आज रात हम बानो दुल्हन का मेहमान हैं। वो तो नहीं मगर ये वीराना और शेरदिल खातून की यादों से भरा है।

0: मेरे दोस्त, हमें एक दूसरे से जुदा होना होगा। तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। मुझे इस कदर रुकना होगा कि खुदा मुझ पर रहम फरमाए। जाओ। मुझे इस तन्हाई की जरूरत है, मेरी मदद करो। जाओ। मैं 3 साल खाने खुदा में था, मगर अब तक शैतान के जंगल से आजाद नहीं हुआ। खुदा मुझे माफ करे, उसने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। जाओ। समझते क्यों नहीं है वान? तुमने अब तक एक शैतान को अपने पुष्प पर सवारी दी है। रुके हुए क्यों हो? जाओ।
1: मुख्तार, खूने हुसैन का इंतकाम लेने वाले का दिल भरा हुआ होना चाहिए। जब तक तुम्हारे कदम जमीन में गड़े हुए हैं, तुम रकाबे हुसैन में शहसवारी नहीं कर सकते। वहब मुख्तार, वहब, वहब नसरानी के साथ हमसफर बन जाओ ताकि इश्क करना सीख जाओ।

0: देख रही हो मेरी दुल्हन, ये कद-ओ-कामत, ये गबरू जवान, ये शेर नौजवान, ये वही कल का नया दुल्हा है जो एक गौहर शनास के नजर पड़ने से नजरे बद का शिकार हो जाता था। देख रही हो, इस जंगी लिबास के साथ तो वो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गया।
1: इस जंगी लिबास में तो मैं तुम्हारी मजीद आशिक हो गई हूँ।
0: इसे मैदान में देखोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हें दीवाना बना देगा। आज वहाब मैदान में अपनी नई दुल्हन के सामने अपनी अदाएं दिखाएगा। वो मैदान में अपनी माँ को लोरियां सुनाएगा और रक्स से तलवार दिखाएगा। उसकी तलवार का रक्स देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। मुझे शक नहीं कि मेरा जवान बेटा आज जमीनों आसमान वालों जिन्नो इंसो मलक सबको मबहूत कर देगा।
2: ज्यादा तारीफ मत करो माँ, मुझे डर है हक अदा ना कर सकूं।
0: तुम वाकई शेर हो मेरे बेटे, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ।
1: क्या तुम्हें आता है वहाँ?
2: क्या आता है?
1: तुम्हें जंग करनी आती है?
2: इतनी अच्छी नहीं जितनी माँ को तवक्को है। तलवार और घोड़ा हर अरब की आबरू है, मैं भी एक अरब हूँ। कोशिश करूंगा कि इज्जत आबरू का भरम रख सकूं। दुश्मन हजारों की तादाद में और हम 100 से भी कम हैं। ऐसे मैदानों में तो माहिर लड़ाकू भी नाबलद लगने लगते हैं। इस जंग में सिर्फ इश्क का सहारा है। अगर इश्क हो तो फिर हाथ और तलवार अपना काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं।
0: माँ की जानो जिगर, देखो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें नबी के नवासे की राह में लाकर खड़ा कर दिया।

0: हुसैन के हाथों ने तुम्हें चुना है। तुम जाहरा के नूरे चश्म के साथी हो। खुश नसीबी यकीनन तुम्हारे कदम चुमेगी बेटे। तुम आलम में मलकूत की महफिल में बुलाए गए हो बेटे। बचगाना फैसला करोगे तो मंजिल को ना पा सकोगे।
1: अम्मा जान, आप तो ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे वहाँ को हम आखिरी बार देख रहे हो।
0: आज करबला में एक के पीछे एक इस्माइल खड़े हुए हैं कि ज़िबा हो सके। मेरा बेटा भी इनमें से एक है। वहाँ कुर्बानी के लिए जा रहा है ताकि अपने खून को हमारे हाथों की मेहंदी बना दे।
1: तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो ना बाप है, ना कोई भाई, ना कोई घर बार है। मुझे तो आपकी बहू बन के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए। मेरी सारी उम्मीद और इश्क वहाँ है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी?
0: प्यारी दुल्हन, कहीं तुम्हारे आंसू शैतान का वसवसा बनकर तुम्हारे मियाँ के कदमों को ना रोक दे। तुम्हारा जैसा आशिक अपने महबूब की हमेशा रहने वाली खुशनसीबी की राह में रुकावट नहीं बनता।
2: अम्मा जान, मैं अपनी नई दुल्हन को आपके हवाले और आपको हुसैन के खुदा के हवाले करता हूँ। वादा कीजिए आप इसके लिए वैसी ही शफीक माँ बनकर रहेंगी जैसे आप वहाब को पालती थी।
0: बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे बहादुर शेर। आज के बाद ये नन्ही सी हूर मेरी दुल्हन भी है और मेरे बेटे की यादगार भी।
1: एक शर्त पर, बस एक शर्त पे मैं राजी होंगी कि तो मैदान जाओ आप।
2: शर्त? आज मौला हुसैन की नुसरत करना वो वाजिब काम है जो खुदा ने उम्मत के हर शख्स पर लागू किया है। खुदा के वाजिब किए हुए अहकामात पर शराइत लगाना महज नाइंसाफी है।
1: मैंने दो टोक बात कर दी है। अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो मैं मौला हुसैन और उनकी खुदा की बारगाह में शिकायत करूंगी।
2: क्या शर्त है तुम्हारी?
1: कबूल करोगे शर्त को तो बताऊंगी।
2: कैसे वादा कर लूं जबकि तुम्हारी शर्त नहीं जानता?
1: मत घबराओ वहाँ। मुझ जैसी एक नई दुल्हन जो अपनी आंखों के सामने अपने तमाम असासे और अरमानों के खत्म होने पर राजी है, उसकी शर्त भी यकीनन मुनसिफाना होगी।
2: बहुत खूब।
0: ओ बेटा, अगर इसकी शर्त तुम्हारे इरादे को निशाना बना दे तो फिर भी मांग जाओगी?
1: अम्मा जान, अगर मैं अपने महबूब के इरादों में रुकावट बनी तो मुझसे बुरी कोई ना होगी। क्या मुझे इस कठिन वक्त में भी अपनी किस्मत को बचाने और संवारने का हक नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि आप चाहें और मैं ना चाहूं? आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी शर्त कोई ऐसी नहीं कि जो हमारे वाहब को मलकूती मेहमान बनने से रोक दे।
2: बहुत खूब, मुझे मंजूर है।
1: तो फिर वादा करो कि तुमने दुनिया में जो मुझे नहीं दिया वो आखिरत में दोगे। तुम्हें वादा करना होगा कि बरोज़ क़यामत मैं तुम्हारी बीवी होगी और तुम मेरे शौहर।
2: सुभान अल्लाह, तुम किस आलम की सैर कर रही हो?
1: उसी जगह जिसको पाने के शौक में तुम बेचैन हो रहे हो।
2: अगर मैं दोज़खी हुआ तो फिर भी मेरी शरीक होना चाहोगी?
1: दोज़ख के दरवाजे फिदायान हुसैन पर बंद हैं।
0: अजीब शर्त लगाई है तुमने मेरी जान। खूब वहां, तो फिर मेरी दुल्हन की शर्त कबूल है?
2: मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, मान ली।
1: तुम्हें किसी की जमानत देनी होगी ताकि मुझे तसल्ली हो जाए।
2: शराफत से बेहतर कौन सा जामिन हो सकता है?
1: वो तो ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मौला हुसैन इस बात के जामिन बने।

0: जमला दफे तब तक इस बच्चे के जादू भरे कमाल का तमाशा होता रहेगा। जाओ इसकी माँ को इसके कंधे रुला दो।
1: जी अमीर।

भेड़े चराने वाली औरत के बच्चे, तू जैसे लादीन बंदे की वादा खिलाफी ताज

0: सक्सेस नहीं है। क्या ये नहीं तय पाया था कि एक पर एक की जंग होगी? अगर वर्थ है तो खुद मैदान में आ।
1: जो भी सांप के बच्चे का डंक सहेगा वो मेरे नजदीक एक बड़ा इनाम रखता है।

0: अरे ओ अहमको, इसके लाशे से भी डर रहे हो?
1: ये मरा नहीं है अमीर, अभी जिंदा है।
0: इस सांप के बच्चे को उठाओ और सूली पर चढ़ा दो, जब तक अमीर का इसके बारे में हुक्म आए।

0: तुम जानते हो क्या कह रहे हो? ये क्या तमाशा है शिविर?
1: कल्बियों में से एक है जिसका नाम वहाब है। यह हुसैन का सहाबी बनने से पहले नसरानी था। अवाम को बताने के लिए बहुत अच्छी दलील है कि हुसैन और उसके असहाब मुसलमान ही नहीं थे।
0: फजूल की बकवास मत करो शिमर, इन फजूलियात के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर नसरानियों से जंग हो गई तो लश्कर बिखर जाएगा।
1: तुम्हें एक पर एक की जंग के लिए राजी नहीं होना चाहिए था उमर। हमारे लोग मौत से डरते हैं और हुसैन के असहाब मौत के इश्तियाक में लड़ रहे हैं। उनमें से एक एक शख्स हमारे लश्कर के सैकड़ों सिपाहियों पर भारी है। मिसाल के तौर पर यह नसरानी बच्चा हमारे कितने नावल लड़ाकुओं को खत्म कर दिया इसने।
0: इसका सर तन से जुदा करके इसकी माँ के लिए भेज दो। और हाँ शिमर, हुसैन के साथियों को हमारे सिपाहियों के सामने तकरीर करने की मोहलत मत दो। इस ग्रोह की जबान इनकी तलवारों से कुछ कम नहीं है।
1: जी अमीर।

0: अरे आप ये क्या कर रही है बीबी?
1: क्या ठीक से नहीं कर रही मैं?
0: ठीक और गलत की बात नहीं है, आपको तो हुक्मरानी करनी चाहिए। अगर आपके हाथ इस मिट्टी में खराब हो गए तो अब उस आग को क्या जवाब दूंगा?
1: अपने आप को मसरूफ रखती हूँ ताकि तरह तरह के ख्यालात मुझे तंग ना करें।
0: आप किस लिए परेशान है बीबी जी?
1: मक्का से कूफे तक कितने दिन का रास्ता है जरबी?
0: किस सवारी के मुताबिक?
1: क्या मतलब?
0: जी हाँ, ऊंट की सवारी से 1 महीना और तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन।
1: अगर ऊंट के हिसाब से भी देखें तो मुख्तार को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। मुझे डर है कि कहीं वो रास्ता ना भटक गया हो।
0: अबू इसाक रास्ता नहीं भटक सकता, वो सहरा को हाथ की हथेली की तरह पहचानता है बीबी।
1: तो फिर कहां गया होगा? पहुंचा क्यों नहीं?
0: अपने दिल को संभालिए बीबी, अबू इसाक इसी रास्ते से अकेला गया था और उसके देर करने में भी यकीनन कोई हिकमत होगी। शायद जानबूझकर उसने रास्ता लंबा किया हो ताकि मक्का के फौजियों को झांसा दे सके।
1: हुर्रा कहाँ है? हुर्रा कहाँ है जरबी?
0: यहीं थी बीबी, मिट्टी से खेल रही थी।

0: ஹுர்ரா ஹுர்ரா ஹுர்ரா.
1: ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरी बच्ची झाड़ियों में फंस गई हो?
0: परेशान मत होइए बीबी, अगर झाड़ियों में फंस गई होती तो शोर शराबा करती, हमें पता चल जाता।
1: पानी पानी जरबी, हुर्रा हुर्रा।

0: ये बच्ची की जबान में बात कर रही है बानू,
1: अपने बाप की जबान में।
0: ये आपकी बेटी है?
1: ये तुम्हारी बेटी है।

0: हमेशा इंसान को गाफिल कर देते हो।
1: यही शिकारी की खासियत होती है बानो, शिकार गाफिल ना हो तो शिकार नहीं होगा।

खुर्रा कहाँ हो बेटी? वाह हो तुम्हारी जात पर, ऐसी लड़की जो इतनी शरीर और फजूल हो कभी नहीं देखी। आज तो दुनिया बदल गई है, हमने तो आज तक लड़कियों को माओ के जैसा देखा था। इस लड़की में तो

0: सर्रा बराबर भी माँ की खूबू नहीं, बिल्कुल अपने बाप की तरह बेचैन लड़की है।
1: अगर किसी सांप या बिच्छू ने उसे डस लिया हो तो
0: हाय तुम्हारी जात पे लानत है बदबख्त।
1: अरे अबू ईसा गए ये तो।

0: क्या इस तरह अमानतों का ख्याल रखते हैं जरबी? ये बच्ची मर जाती तो
1: आपके कदमों पे कुर्बान हो जाऊं सरकार। ये बच्ची इंसान की बच्ची नहीं है, लाल आंगी है, काली बला है।
2: जरबी
1: जी हाँ बानो, ये झूठ नहीं है। इस डेढ़ बालिश की बच्ची में डर है ही नहीं। तमाम जानवर इसके हाथ से पना मांगते हैं। एक दिन ये इतना मोटा सांप लेकर खेल रही थी, शुक्र है सांप ने कुछ ना किया। मैंने बानो हुरा की तरह नटर और बेबाक बच्ची कभी नहीं देखी। अगर ये लड़का होती अपने बाप का हाथ पीछे करके बांध चुकी होती। ये देखिए, अब इस बेजुबान खरगोश को इतना दबाएगी कि इसकी जान निकल जाएगी। इसे छोड़ दो बेटी। लुलू कुरकुरे हैप हैप।

0: ये लो सरकार, ये रही आपकी दूसरी अमानत। आज शाश बशाश आपकी भू पहचान कर बेताब हो रहा है।
1: बेशक तुम एक बेहतरीन अमानतदार हो जरवी।
0: जी हाँ, इसके बाद नहीं होऊंगा। तुम्हारी इन अमानतों के बोझ तले मेरी कमर टूटने वाली थी। ये लो सरकार, ये आपका घर बार, ये बानो उमरा और आपकी बच्ची, और ये दुल। अब मुझे माफ कर दो सरकार, मैं 3 साल के बाद एक रात पुरसकून नींद सोना चाहता हूँ।
1: किस बात पर गुस्सा हो जरबी?
0: गुस्सा हो रहा हूँ? कुल्हाड़ी मारोगे तो मेरा खून नहीं निकलेगा। कुछ ही देर में ये डेढ़ बालिश की बच्ची मेरी 10वें साल की इज्जत और आबरू को जाया कर देती। अब तुम ही बताओ, अगर इस बच्ची को कुछ हो जाता तो कोई मानता कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है? ये बच्ची तो इंसाफ के करीने से भी दूर है।
2: ये तुम आज हुरा से उलझ क्यों रहे हो?
0: ये मुझसे उलझ रही है? दालू अक्का क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं बुरा हूँ, आख हूँ।
1: जरबी, हुर्रा को मेरी खातिर माफ कर दो।
0: जी सरकार, माफ कर दिया, आप जान मांग लीजिए। खुशामदीद अबू इसाक, बहुत देर कर दी, हम बहुत परेशान हो गए थे।
1: मैं शर्मिंदा हूँ जरबी। मुख्तार, एक बहुत बड़ा बोझ है तुम्हारे कंधों पर। खुदा मुझे बदला चुकाने की तौफीक दे।
0: जी नहीं सरकार, कोई बोझ नहीं है, हम तो आपके गुलाम हैं सरकार।

0: मेरी माँ की क्या खबर है?
1: उनसे बेखबर नहीं हूँ, एक बार उन्हें देखने भी गई। खुदा का शुक्र है कि खैरियत से थी, सिर्फ जरा सा थकी हुई थी और वतन से दूरी का एहसास कर रही थी।
0: वो लफ्का आ जाती तो वतन की याद कम आती उन्हें।
1: नहीं, ये ठीक नहीं होता मुख्तार। उम्मे साबित मुझसे बड़ी हैं, बानो दुम्मा को उसके घर जाना चाहिए था।
0: मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम्हारी सौकन के घर क्यों गई हैं। मुझे पता है कि तुम हसद और बुग्ज से बरी हो, मगर दुम्मा मिजाजन बाग हरियाली मुर्गी और भेड़ बकरियों की आदि हैं। लफ्का उनके लिए ताइफ जैसा माहौल होता है, कूफे में पिंजरे में बैठे एक परिंदे की तरह है।
1: बाना दुम्मा एक पढ़ी लिखी और होशियार खातून है। खुदा जानता है कि मैं बानो दुम्मा से मिलकर कितनी महसूस होती हूँ, मगर काश तुम बुढ़ापे में उस खातून को उनके ताइफ के घर और बाग से अलग न करते।
0: और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास उमरा। आले जुबैर के हिजाज में होते हुए और उनकी दुश्मनी मुझसे होते हुए ताइफ दुम्मा के लिए कोई पुरम सरजमीन नहीं थी। मुझे खौफ था कि उसे अजिया देकर मुझे तस्लीम करवाने की कोशिश करते।
1: क्या वाकई आले जुबैर इतने हंसे गिरे हुए हैं कि अपनी और दुश्मनों की जंग में दुश्मन के घर वालों तक को घसीट लेते हैं?
0: आले जुबैर आले उमैया से ज्यादा फासिद और ज्यादा खतरनाक हैं। जिस रात खाने काबा जल रहा था मैंने ये अपनी आंखों से देखा। उस रात जुबैर के बेटे की खाने काबा की तरफ उठी हुई पुरमुसरत नजरें शैतानी नजरें थीं उमरा, जो नहायत हैरत अंगेज थी। मत पूछो कैसे मजे ले रहा था वो, हमारे आग बुझाने के मुखालिफ था, तुम्हें यकीन नहीं आएगा।
1: वो क्यों?
0: उसका दावा था कि इस तरह यजीद की हुकूमत जमीन बोस हो जाएगी और जुबैरी हुकूमत छा जाएगी।
1: तो मक्का के सफर की सौगात ये थी? आज के बाद से मुख्तार दो मैदानों का घुराने वाला शेर है, मैदान जंग यजीदियों और जुबैरियों का।
0: तुम्हें मेरे सफर मक्का से कैसी सौगात की तवक्को थी?
1: हाजी साहब, सफर हज की बेहतरीन सौगात मारिफत है। नए दुश्मन की पहचान कोई कम कीमत सौगात नहीं।
0: तो फिर मजीद कठिन दिनों के लिए तैयार हो जाओ।
1: तुमने क्या समझा है कि उमरा बावर्ची खाने में सर झुका के काम करने वाली बीवी है? जरा अपने घर को तो देखो। मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में इस घर की हर चीज ठीक रहे। सिर्फ तुम्हारी गैर मौजूदगी को बर्दाश्त करना मुश्किल था। हमारी बेटी के बालों की तादाद के बराबर वक्त गिना है इंतजार में। तुम तलवार चलाते थे और मैं कंघी चलाती थी हमारी बेटी के सर में। तुम खाने काबा का दिफा करते थे और मैं उसकी कहानी हमारी बेटी के कानों में सुनाती थी।
0: मैं दुश्मन के खिलाफ खड़ा हुआ और तुम अपने दिल के खिलाफ, तो फिर तुम्हारा जहाज ज्यादा मुश्किल था और तुम्हारा अजर भी ज्यादा है।
1: ये माले गनीमत बांटने का वक्त नहीं है हाजी साहब। दुश्मनों पर फतायाब होने तक एक तवील राह का सामना है। बैठे क्यों हो, उठो। तुम 3 साल कूफे से दूर थे, हुसैन का बदला लेने वाले तुम्हारे मुंतजर हैं।

0: तुम्हारा कुछ खो गया है?
1: मैं अपने हाथ पांव खो चुका हूँ बिनका, मैं सरगर्दा हूँ, मैं मेरा दिल बेचैन हो रहा है। 3 साल से मैंने अबू इसहाक को नहीं देखा, कभी भी हमारे दरमियान इस कदर जुदाई वक्त नहीं।
0: तुम्हें बड़े होने में वक्त है ज्ञान, बहुत जल्द ढीले पड़ जाते हो।

0: मेरा कसूर नहीं है।
1: कभी कभार तुम्हारे इश्क मोहब्बत पर मुझे हसद होने लगता है क्या? खुशकिस्मत हो कि हमेशा से तुम्हारी एक मंजिल रही है जिसके तुम आशिक रहे हो। पीछे पलटो ज्ञान, माशूक ने चेहरा दिखा दिया।

0: रुख बन जाएंगे। आले जुबैर सिर्फ हमें और तवाबीन को आपस में लड़ा देगी ताकि कूफे पर हुकूमत मजबूत कर सके। जरबी जीन उठा रहा दो दुल के ऊपर से।
1: क्यों सरकार, अभी तो इसे तैयार करने का वक्त है, ये बहुत खास हो चुका है।
0: नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं दुल्दुल पर सवार होकर निकलूं।
1: देर हो गई है सरकार, इस पे सवार होकर तो देखो कैसे नाच दिखाता है। जब चलता है

0: भागता नहीं है, ये उड़ता है। इस पे बैठ कर तो देखो क्या शे है।
1: दुलदुल महराज का घोड़ा है जरबी, वो तैयार हो चुका है, मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ।
0: तो फिर तुम कूफा कैसे जाओगे?
1: उसी मक्का के हम सफर के साथ।
0: उस बेजुबान में तो बिल्कुल ताकत नहीं बची है, गुनाह है ये। उस बेचारे ने मक्का से यहाँ तक का सफर किया है, थका होगा, बूढ़ा है वो जानवर, इस जैसी ताकत नहीं रखता।
1: हम दोनों आपस में निमट लेंगे।
0: आओ मेरे भाई, देखा ना तुमने, मेरी बात को भी टाल दिया, नहीं हो सका। अब एक बार फिर तुम इंतजार करना होगा। तुम्हारे लिए क्या ख्वाब देखा है खुदा ही जानता है।

दे देती है, चाहे वो पिछले साल फेल ही क्यों ना हो गया हो। यानी फेल से मुराद क्या, यानी जाहिर है जो इमाम ने हमसे मांगा, इमाम ने हमसे चाहा, क्या हमने पूरा साल अदा किया? नहीं किया। मैं आपको नहीं, खुदा ना खास्ता, मैं अपने आप को कहूँगा कि नहीं कर सका वो बातें, वो वादे, वो चीज़ें जो सीखी थी। मगर फिर दोबारा यूनिवर्सिटी खुली और दोबारा मुझे दाखिला मिल गया। दोबारा से यूनिवर्सिटी खुली हुई है, ये यूनिवर्सिटी किसी के पास नहीं है। जाने वह दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ आपको डिग्रियाँ कागज़ देते हैं, जिसकी बका पर शायद आप अपनी मादियत और मादी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, लेकिन ये वो यूनिवर्सिटी है कि जो आपको दुनियावी कागज़ नहीं देती, बल्कि आपको आखरत और खुल्द का रास्ता बताती है। इसी वजह से हमें इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना, बेहतर तरीके से शिरकत करना और सबसे बढ़कर इससे फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। यानी आप जी मजलिस की और मजलिस करता है इंसान, खुदा तौफीक भी दे सबको करे, लेकिन ये होता है कि बहुत से लोग तो ज़ाहरी फ़ायदे लेते हैं, लेकिन असल मानवी फ़ायदा है वो कहाँ है? ये जो आशूरा है, ये हर साल जो तकरार होती है, ये इस दुनिया के बातिन में हर साल ये हादसा इत्तफाक उठाता है। हर साल ये आशूरा मादे जहान के जो बातिन है उसके अंदर ये तकरार हो रहा है। हर साल मोमिनीन के कल्ब नरम होते हैं, हर साल हमारी आँखों में गिरिए आते हैं, हर साल इंसान हिदायत की तरफ खिंचा चला जाता है। ये हर साल हो रहा है, ये सिर्फ 61 हिजरी का वाकया नहीं है, ये हर साल कुलूब को और इंसान को उसके हदफ की तरफ बढ़ने में ये आशूरा हर साल अंजाम हो रहा है। जहाँ पर बंदगी है, जहाँ पर नौरानियत है, वहाँ पर दूसरी तरफ शैतान भी है जो अपना काम कर रहा है, जिसने अपना काम किया। जाने मोहतरम, मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हम दुश्मन शनासी से वाकिफ नहीं हैं। हम जहाँ अच्छों का जिक्र करते हैं करबला के लिए, वहाँ पर ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन थे जो मुकाबले में इमाम के आए, और वो कैसे लोग थे, और वो कैसे बन गए, और उनके हदफ क्या थे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उनकी निशानदेही नहीं करेंगे, हम अपने वक्त के इमाम की किस तरफ खड़े होंगे हमें नहीं पता। इसलिए करबला के रास्ते से गुज़र ही कर ज़हूर तक पहुंचा जा सकता है, और कोई रास्ता ज़हूर तक का नहीं है। दुश्मन कौन था, दुश्मन कौन है, कौन सामने खड़ा हुआ था, क्यों उनके लिए लान भेजना, या उनके ऊपर जो लानत हम करते हैं ज़ियारत आशूरा में भी, क्यों ज़रूरी है, क्यों उनसे नफ़रत दिल के अंदर ज़रूरी है? क्योंकि वो हक के बिल्कुल मुकाबले पर, कुल के कुल ईमान के मुकाबले पर, असल कहीं खैर वजूद नहीं रखती थी वहाँ, कि दिल में कहीं रहम आए कि नहीं शायद कोई ऐसे आ गया होगा बेचारा, या मसलन किसी को पता नहीं होगा। नहीं, अगर जो ऐसे वैसे थे कि जो असल में अच्छे थे, और अगर इधर आ गए थे तो वो आशूरा तक पलट आए, वहाँ कोई नहीं रहा। हुर अलैहिस्सलाम हो गए, वहाँ थे, रोकने वाले थे, मगर अंदर वजूद में वो मोमिन की खसलत पाई जाती थी हज़रत हुर के अंदर, जिसने उन्हें खींच लिया इस तरफ। अब जो नहीं आया वो नहीं आया, नहीं आने के लिए हमारे दिल में नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब नहीं। इसीलिए आज हमें वाजे होना चाहिए, जो आज इस्लाम का दुश्मन है उसके लिए हमारा दिल गोशा नरम नहीं होना चाहिए, कि अगर आज जो है वो बिल्कुल हक के मुकाबले में खड़ा हुआ है, आज जो है वो बिल्कुल इंसानियत को कत्ल व गारत कर रहा है, उसके लिए नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब थोड़ा सा हम नर्म हो जाएं। नहीं, नरमी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब आप बरात करते हैं, नफ़रत करते हैं उससे, तो फिर आपको सफ़ बंदी करनी है, आपको अपनी सफ़ें बनानी है, आपको अपनी सफ़ें मजबूत करनी है, तभी तो आप मुकाबला कर पाएंगे किसी का। करबला यही है कि हक वालों ने अपनी सफ़ों को मजबूत किया, चाहे बातिल जितनी ताकत रखता था सामने, चाहे बातिल अपने ज़माने की सारी चीज़ों को, एनर्जी को लेकर खड़ा हो गया, लेकिन हक के मुकाबले में नाकाम ही रहा। जो कि जाहिर अगर कामयाबी थी, मगर जाहिर कोई कामयाबी नहीं थी, उसके बाद ना उसका नामो निशान रहा ना वो। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाना, और उसको ये हमारी ज़िम्मेदारी है अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम इस पैगाम को अव्वल तो ख़ुद समझें, फिर उसके बाद दुनिया तक पहुंचाएं। पहले हम खुद समझें, उस पर अमल करें, क्योंकि अगर ये हमने नहीं पहुंचाया, हमने खयानत की, हमसे कोताही हुई, कि अगर हम इन मजालिस के ज़रिए से

आज़ादारी के ज़रिए से जो भी तरीका है, चाहे सेमिनार हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, कुछ भी हो, अगर इसके ज़रिए हम असल पैगाम को नहीं पहुँचाएँगे इंसानियत के, तो कल को हमसे सवाल किया जाएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी तुम्हारी सिर्फ चंद ज़बान की लज्जतों के लिए नहीं दी थी कि तुम मजलिस में आओ, मजलिस में बैठो और तुम थोड़ी सी अपनी लज्जत के लिए उठो और चले जाओ। आप खुदा ना खास्ता ऐसे नहीं है, ना ही लोग हैं। मोमिन कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। मोमिन का कुलूब इमाम हुसैन के लिए गिरिया को ना आए। मोमिन कभी भी मजालिस और अज़ारी से ऐसा काम नहीं कर सकता। बहरहाल कोई और लोग हैं जो शायद हमें लगता है कि हमारे तशय्यों को ख़राब करें, लेकिन मोमिन के जो इमाम हुसैन की आज़ादारी के लिए घर से बाहर निकले, कभी भी गलत नहीं सोच सकता और कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इश्क है उसे इमाम हुसैन से। नंगे पाँव अगर कोई निकलता है, कोई जिसी हालत में निकलता है, आप देख लें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, जहाँ भी आज़ादारी हो रही है, फ़कीर अमीर कोई इमाम हुसैन की बारगाह में नहीं है। इमाम हुसैन की बारगाह में सब फ़कीर हैं। क्यों? क्योंकि बादशाह सिर्फ हुसैन है और सब उसी कुर्बत से आते हैं कि कुछ लेकर चले जाएं, कुछ मिल जाए। किसी को होश नहीं होता कितने दिन आप देखें, ख़ासतौर पर पहले 10 दिन तो इंसान इतना ज़्यादा मुस्तरब होता है कि किसी हालत में इधर चला जाए, उधर चला जाए, जो भी निकल रहा है। जाने मोहतरम, ये हमने अपनी लाइनें और सफ़ें बना ली हैं, ऐसा नहीं है। देखें, ये इश्क है इमाम हुसैन का, कोई भी नाम नहाद के लिए, किसी और केस के लिए नहीं आई है। इमाम हुसैन है जो खींच रहे हैं उसको। इसी तरह आप देखें कि जो ज़्यारत पे जाता है, कि कल इंशाल्लाह मुफस्सल गुफ्तगु ज़्यारत अरबईन पर करेंगे और ज़्यारत के फ़ज़ाइल पर, लेकिन ये इमाम हुसैन का इश्क है जिसने आपको भी जमा किया हुआ है। ये इमाम हुसैन का इश्क है जो हम जैसे जो है वो अदना हकीर से, तालिब इल्मों से जो है वो ऐसे बयान करवा रहा है, इश्क हुसैन है। यानी कोई भी आदमी ना इतनी ताकत रखता है, ना इतनी एनर्जी रखता है, कितना गिरिया करेंगे आप? हमारा अपना कोई मर जाए, हम कितना गिरिया करते हैं? थोड़े दिन गिरिया करते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है मामला। मगर अजीब है कि बचपन से जब से होश संभाला है, हुसैन का नाम आते ही आँखें नम हो जाती है। और जब तक जिंदा है, जब तक इंसान इसी नाम पर गिरिया करता है, इस नाम में ऐसा कुछ है। क्यों ना हो? क्योंकि यही नाम है जो अर्श तक लिखा हुआ है, इन्नल हुसैना मिज़बाउल हुदा व सफीनत दुन्निजात। अर्श पे लिखा है, न सिर्फ मेरे और आपकी हिदायत के लिए, बल्कि जितनी मखलूकात आलम हैं सब की हिदायत इमाम हुसैन के पास है। हमें नहीं पता कितने आलम हैं, कितने अवालिम हैं, उन अवालिम के अंदर कौन किस मुश्किल, हमें नहीं पता। लेकिन हमारे कुलूब अगर इमाम हुसैन की मारिफत हासिल न कर पाए ना यहाँ में, तो बहुत ज़रूरी है। जाने ये जो सामने वाला है, जो इमाम के मुकाबले में है, इसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम उसको स्कैन नहीं कर पाए, आज हम उसको एनालाइज नहीं कर पाए कि सामने वालों में क्या खसलतें पाई जाती थी, हम आज वक्त के इमाम के शायद साथ देने में कोताही हो जाएगी। कौन सी चीज़ वाजे थी सामने वालों में कि जो उस शख्स को पहचान नहीं पाए कि जिसे कितने आलम झुके हुए थे, सजदा कर रहे थे, खुदा की बारगाह में सजदा कुना थे, लेकिन इमाम हुसैन की तरफ झुके हुए थे। मैंने पत्ता जानता था, पानी जानता, इमाम हुसैन के लिए पानी को लाना मुश्किल नहीं थी, मगर क्योंकि अहद किया था खुदा से कि ये कुर्बानी देनी है तो देनी है। ना खुदा ने, बाज़ हमारे अस्तीद बयान करते हैं कि परवरदिगार ने जब सब ख़त्म हो गया आशूरा में, तो भी इमाम हुसैन के पास पैगाम भिजवाया कि अगर तुम चाहो तो मैं सबको वापस ला सकता हूँ। कहा नहीं, मैंने जो किया था मैं उस पर कायम रहूँगा। इसीलिए तो रज़ा यानी रिजायत, कज़ा व कदर पर राज़ी होना, करबला से कमाल तक कोई नहीं हो पाया। अपने अहद पर वफा करना करबला से ज़्यादा किसी लोगों ने नहीं किया, तारीख़ बशरियत के अंदर लिख दिया गया। यानी वो अहद किया, वो रज़ा दिखाई कि बस खुदा, वरना आसान नहीं था 6 माह के बच्चे को दे देना, कि जहाँ पर इंसानियत का कत्ल हो रहा है, बच्चे का कत्ल नहीं है, बच्चे को शहीद नहीं किया जा रहा, पानी नहीं रोका जा रहा, इंसानियत कत्ल हो रही है। आज जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो अपने आप को
اسلامی حقوق اور بشر کا دعویٰ کرتے ہیں، آج کیا کر رہے ہیں؟ جب ان کے اختیار

रात खत्म हो जाते हैं जब इनके पास कुछ नहीं रहता, मजबूर होते हैं तो ये इंसानियत का भी पांव कुचलना शुरू कर देते हैं। इमाम हुसैन ने दुश्मन को उस मकाम पर ले आए कि दुश्मन नाचार हो गया और अपनी हैवानियत को आश्कार कर दिया। मुनाफिकत के पर्दे करबला में छट गए सारे, कोई मुनाफिकत नहीं रही कि सामने कुछ और पीछे कुछ और नहीं, जो थे वो वाजे हो गए करबला के अंदर। यही थे, ये छुपे हुए चेहरे थे कि जिन्होंने खयाम में खयामों को आग लगा दी, ये थे कि जिन्होंने मस्तूरात के पर्दों को छीन लिया, ये थे कि जिन्होंने चलते हुए दामनों में आतिश लगा दी। ये इनकी हकीकत थी। अगर इमाम हुसैन का कयाम न होता तो ये नकाब ज़दा चेहरे इस्लाम के अंदर दाखिल थे और इस्लाम की असल असास को तबाह करना चाहते थे। ये इमाम हुसैन ने कयाम कर कर इस्लाम के उस बेस को, उस जड़ों को बचाया कि जिसकी वजह से आज मैं और आप खुदा की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। ये इमाम हुसैन का था। इमाम हुसैन ने अहराम तोड़कर काबा की हुरमत को बचाया। इमाम हुसैन ने अपना सब छोड़कर अपने आप को प्यासा कुर्बान कर कर मगर दुनिया को सैराब कर दिया। उस इल्म से, उस मानवियत से, उस रास्ते शहादत से कि जो आज भी दिलों के अंदर उजागर कर रहा है। क्योंकि जिसका सरदार अपनी गर्दन दे दे, उनके नौकर ये तमन्ना ना करें कि उनकी गर्दनें चली जाएं। आ वो शहीद मोहसिन हुज्जाजी कि जिससे पूछा गया कि इमाम हुसैन के लिए बड़ा काम क्या करना है, तो कहता है इमाम हुसैन के लिए अगर कोई काम करना है तो अपनी गर्दन उस रास्ते पर देना है जिस पर इमाम ने दी। और दी उसने अपनी गर्दन इस दौर के अंदर देकर ये दिखाया कि करबला का रास्ता आज भी जिंदा है। अज़ीज़ाने मोहतरम, हमें क्या करना है, हम क्या करें? वो हम अपनी गर्दन तो नहीं दे सकते, वो कम अज़ कम हम जद्दोजहद करें, मेहनत करें, मुशक्क़त करें अपनी फील्ड में, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कम्युनिटी हो, उसको इन्हेंस करें, इस मकाम पर लेकर आएँ कि इमाम ज़माना की निगाह जब हमारी कम्युनिटी पर पड़े तो कहें कि पूरी की पूरी कम्युनिटी मेरी कॉलोनी में शिफ्ट हो जाए, उस हकूमत में, उस शहर मुसल में, उस एपोक्लिप जो आखिरी ज़माना आएगा, उस अथोपिया के शहर के अंदर के जिसे फ़राबी, जिसे एरिस्टोटल सब ने डिफ़ाइन किया है, उस शहर में, उस शहर में कौन जाएगा, वो शहर किसका होगा? आज जुम्मे का दिन है, मुतवक्का ज़हूर का दिन था और इमाम नहीं आए और मैं और आप कितना परेशान हुए, कितना मैंने आज अपनी तरफ़ देखा कि मौला आज भी नहीं आए, एक और मेरा जुम्मा मेरी ज़िंदगी से गुजर गया। अज़ाने वो तो मुझे नहीं पता कितने जुम्मे और बाकी हैं, कितने दिन और बाकी हैं ज़हूर में, और कितने दिन और बाकी हैं मेरी ज़िंदगी के, मुझे तो नहीं पता। लेकिन जब तक मैं हूँ, मुझे अपने आप को इन्हेंस करना है, अपने आप को ऊपर लेके जाना है। जाने मोहतरम, हम उस माशरे की तश्कील दें जिस माशरे के लिए इमाम आएंगे। ज़ाहिर है लोग कहीं बाहर से तो शिफ्ट नहीं होंगे माला के पास, या बोलेंगे किसी और प्लेनेट पर, मार्स में या प्लूटो में कोई लोग रह रहे हैं, जब इमाम का ज़हूर होगा तो वो इमाम के साथ रहेंगे? नहीं, यहीं से लोग जाएंगे इमाम की खिदमत में, यहीं से लोग उठेंगे जो इमाम के पास पहुँचेंगे। तो हम क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? और यकीनन आप कर रहे होंगे। हम उन चीज़ों को अपने अंदर पैदा करें कि जो इमाम के ज़हूर के लिए और फिर ज़हूर के बाद इमाम की हुकूमत के लिए ज़रूरी है। हम इमाम के ज़हूर की बहुत बात करते हैं, करबला है ही यही। करबला क्यों है? कि सामने वाले कौन थे देखते रहो, कहीं वो चीज़ें तो नहीं है तुम्हारे अंदर, ताकि उनको दूर करो अपने आप से, और इधर जो लोग थे उनके अंदर क्या था उनको अपने अंदर उजागर करो। एक चीज़ जो कि वाज़े है वो दुनिया है। दुनिया, दुनिया से मुराद ये नहीं है कि मसलन आपके पास, अब बोले कि मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं पहाड़ों में चला जाऊं, नहीं। जुहद की जो तारीफ़ है वो जुहद की तारीफ़ तरके दुनिया नहीं है। जुहद जो है वो तकवा की लेटेस्ट डिग्री है। तकवा से ऊपर वरा, वरा से ऊपर जाहिद होना, यानी जाहिद यानी बहुत ही कोई हाई फाई यार, इतना तकवा यानी अपने परवास पर है। आयतुल्लाह उज़्मा बेहजत रिजवानुल्लाह ताला अलैह की आपकी सलावत उनके दर्जात में इजाफा फरमाए। आयतुल्लाह उज़्मा बेहजत फरमाते हैं कि जुहद की तारीफ ये नहीं है कि आप दुनिया को तर्क कर दें। दुनिया आपके पास हो मगर आप

का दिल दुनिया में नहीं होना चाहिए। यानी मेरे पास देखो, अब मेरे पास दुनिया मेरी ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए या जो मेरी ज़रूरियात हैं। जब भी इंसान अपनी ज़रूरियात से हदूद को पार करेगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ शुरू हो जाएगी। यानी आप अपनी चादर से, आप अपनी तवक्कात से, आप अपनी इनकम से ज़्यादा की ख्वाहिशात करेंगे तो लामवाला आपको हराम काम करना पड़ेगा, लामवाला आपको किसी का हक खाना पड़ेगा, लामवाला आपको कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी कि जो आपको आपके दायरा इबादत से खारिज कर बैठेगी। कहीं ना कहीं आप किसी का हक ज़ाया कर बैठेंगे किसी न किसी तरह। तो कनात एक ऐसी चीज़ है कि जो इसी दुनिया को एक बैलेंस स्टेट पे लेके आ सकती है। कि अगर आप बोलेंगे जी दुनिया भी है, दुनिया भी सारी चीज़ें हैं, दिल दुनिया में ना हो, आज अच्छा है आ गया, बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज कुछ नहीं आया, बहुत ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे मुकद्दरात तो खुदा के हाथ में हैं, सारी चीज़ तो खुदा ने लिखी हुई है। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि जो चीज़ तुम्हारे नसीब में लिखी है खुदा ने, पूरी दुनिया जमा हो जाए और तुमसे छीनने की कोशिश करे तो तुमसे छीन नहीं सकती, और जो चीज़ तुम्हारे नसीब में खुदा ने नहीं लिखा, दुनिया के सारे वसाइल जमा हो जाएं वो चीज़ तुम्हें देने के लिए, तो तुम्हें कोई कुछ दे नहीं पाएगा। यानी खुदा है, यानी वो खुदा है कि जिसने दुनिया बनाई है, वो खुदा है जिसने मुझे बनाया, वो खुदा है जिसने मेरे मुकद्दर को लिखा। तो बस मैं क्यों इतनी देर कर रहा हूँ इधर उधर से घूम के उसकी तरफ जाने के लिए, जबकि जाना मुझे उसी के पास है। खूब ये फितरत है इंसानी है कि जब मुश्किल में फंसता है तो रब याद आता है, जब बीमार होता है तो खुदा याद आता है, जब परेशान होता है तो खुदा याद आता है, कभी औलाद की मुश्किल होती है तो खुदा याद आता है, कभी कहीं पर कोई धचका लगेगा तो खुदा, आगे पीछे खुदा कहाँ है, होगा कहीं, बना दिया, सो रहा होगा कहीं शायद, मुझे मेरी अपनी ज़िंदगी है, चल रही है। अब जैसे कभी बहुत मुश्किल फंसती है तो मौलवी भी तभी याद आता है, वरना मौलाना साहब या तो निकाह पढ़ाते हैं या जनाजा पढ़ाते हैं, बेचारे मौलवी का और काम ही क्या है। अब थोड़ी सी मुश्किल फंस जाए, जब कुछ नहीं हो पाया, तो वैसे तो बाबे वाबे बहुत हैं माशाल्लाह माशरे के अंदर जो हर चीज़ का हल करते हैं, लेकिन फिर मौलाना साहब कोई दुआई बता दें, कोई वजीफ़ा बता दें, बड़ी परेशानी थी, अच्छा भाई ये पढ़ लें, अहले बैत ने ये फरमाया, पढ़ लेते हैं, जब काम हो जाता है तो कभी ये भी नहीं सोचा कि चलो मौलाना ने कहा था मिठाई दे दें बेचारे को कि खुशी का काम हो गया, नहीं फिर मौलाना कहाँ जाते, फिर कहीं फंसेंगे, फिर मौलवी याद आएगा। तो मसला नहीं है अज़ीज़ाने मोहतरम, खूब अल्लाह का शुक्र है किसी बहाने से अल्लाह के बंदों से हम रुजू तो कर लेते हैं, चाहे मुश्किल ही में सही, लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम खुदा हर वक्त हमारी तवज्जोहात को अपनी तरफ चाहता है। ये हमारे कोताही है, खुदा को हमारी ज़रूरत नहीं है, खुदा की खुदाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मखलूकात उसको ना देखे। यही तो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, परवरदिगार मैंने तेरी मखलूकात से तुझ तक नहीं पहुंचा, क्यों? क्योंकि तू किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं कि तुझ तक पहुंचा जाए इनके ज़रिए से, तू है असल के जिसकी वजह से सारी मखलूकात है, तू है कि तेरी वजह से सारी चीज़ें हैं, तुझे किसी चीज़ का मोहताज नहीं है कि तुझ तक पहुंचने के लिए मैं इन चीज़ों को देखूं और फिर तुझ तक पहुंचूं। कमाल है इमाम हुसैन की मारिफत अगर हमें देखनी है, जान दुआ अरफा पढ़ें, दुआ अरफा का तर्जुमा पढ़ें कि जहाँ मेरा मौला कहता है अंधी हो वो आँख जो तुझे देख ना पाए, और जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया। असल देखें असास करबला की तौहीद है, और हमेशा तौहीद के मुकाबले में दुनिया आई है, दुनिया परस्ती, मनसब, जायदाद, औलाद, हर चीज़ आई है, और कुरान सबको डिफाइन कर रहा है। औलाद आई, हज़रत नूह को छोड़नी पड़ गई, आके छोड़ो, अगर बैठेगा मानेगा तो आएगा, नहीं आया छोड़ दिया। अजवाज आई, कितने अंबिया की अजवाज नहीं आई, छोड़ दिया। मनसब आए, दुनिया आई, फिरौन आया, शद्दाद आया, नमरूद आया, सब क्या था, दुनिया, दुनिया पूरी कोशिश कर रही थी, मगर दुनिया के पीछे कौन था, इबलीस। अच्छा हमें पता ही नहीं है कि असल दुश्मन कौन है, इबलीस है जो दुनिया को हसीन दिखाता है, वो शैतान है जो दुनिया को रंगीन दिखाता है, किसी भी एक तस्वीर को इतना खूबसूरत करता है कि मेरे नफ्स को अपनी तरफ खींचता है और मुझे उसमें बताता है।

कि तुम्हारी लज्जत इसी में है, चाहे वो लुकमा हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो मनसब हो, कुछ भी हो। अब जैसा मैं हूँ वैसी मेरी दुनिया है, मैं मौलाना हूँ वैसी मेरी दुनिया है, मेरी मजलिस शायद मेरे लिए बहुत अच्छी होगी, शायद मेरे लिए मेरा मकाम मेरा नाम बहुत अच्छा होगा कि मजलिस से पहले इश्तिहार में मेरा नाम क्या लिखा गया, कितने अल्लामा लगाए गए मेरे नाम के आगे, आयतुल्ला कितने लगे, कहाँ मुझे बिठाया गया, मेरी ये दुनिया है, मैं इसी में फंसा हुआ हूँ अभी तक। आपकी दुनिया अलग होगी, जिसकी जैसी दुनिया शैतान उसी को लेकर सामने आता है, और वही अपनी पूरी ताकत से करबला में लेकर आया था कि यहाँ लोगों को पता था कि सामने नवासा रसूल है, वो रसूल का नवासा कि जब रसूल सजदे में थे तो सजदा तोलानी करना पड़ गया इस नवासे की वजह से, वो जानते थे। जाने मोहतरम, हम बहुत सारी बातें जानते हैं, हमें पता है, मगर क्या हम अपने वक्त के इमाम की तरफ मुतवज्जह हैं? क्या कौन सी चीज़ है जो मुझे मेरे इमाम से दूर कर रही है? मैं कितना याद करता हूँ इमाम को, और कितना मुझे याद करना चाहिए इमाम को। मैं खुदा ना खास्ता आपको नहीं, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? आपके पास कोई आया बोला आपकी भी परेशानी को बताइए, या मसला आपके पास कोई शख्स आया कि मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, आप क्या ख्वाहिश करेंगे उस वक्त? हर इंसान अपने आप से पूछे, मेरी क्या ख्वाहिश पूरी करेंगे? मेरी ख्वाहिश होगी, आपकी क्या ख्वाहिश होगी? मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे ये मनसब मिल जाए, या मुझे औलाद मिल जाए। शायद हमारी आम जिंदगी की ख्वाहिशात तो यही है कि भाई ये ख्वाहिश पूरी है, लेकिन क्या वो एक ख्वाहिश अगर कोई हमसे कहे कि हमें पूरी हो जाएगी, क्या मैं उस वक्त ज़हूर इमाम ज़माना बोलूँगा? वहीं से तो पता चलेगा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है, मेरी सबसे बड़ी परेशानी क्या है। ज़हूर इमाम, इमाम नहीं है, इमाम ग़ैबत में है, इमाम ज़ाहिर नहीं है। ज़हूर दो तरह का है अज़ीज़ाने मोहतरम, एक ज़हूर शख्सी है और एक ज़हूर अमूमी है। ज़हूर अमूमी तब होगा जब इमाम आएंगे और सब इमाम को आवाज़ सुन लें, और इमाम जब ज़हूर करेंगे मक्का के पास, ज़हूर अमूमी है। ज़हूर शख्सी क्या है? उसकी दो किस्में हैं मज़ीद, एक वो कि मैं अपने बातिन को पाक और साफ करूं, ये ज़हूर शख्सी है, ये इंडिविजुअल का ज़हूर है, और दूसरा कि मैं इमाम की नूरानियत को अपने वजूद में दाखिल करूं। ये स्टेप हैं, ये होंगे तो मैं उस ज़हूर अमूमी तक दर कर पाऊंगा। ये ना हो कि ज़हूर अमूमी हो, एक आम सतह पर इमाम की सदा आए अना बकियतुल्ला, लेकिन मुझे आवाज़ अगर आए और मैं इग्नोर कर दूं, क्या होगा फिर? कितना बड़ा सितम होगा मेरी ज़िंदगी पे कि सारी ज़िंदगी मैं इमाम का इंतज़ार करता रहा और मुझे इमाम की आवाज़ नहीं आई, या आई तो मैं इमाम की तरफ। क्यों? क्योंकि मैं ज़हूर शख्सी से नहीं गुजर रहा, मैं अपने वजूद को पाक करूंगा तो इमाम की नौरानियत मेरे वजूद पर असर करेगी, ये वजूद असर करेगी तो फिर मैं मुशर्रफ होऊंगा कि मैं इमाम से मुलाकात करूं। और जिन्होंने दौरे गैबत में इमाम से मुलाकात की, उनके वजूद में ये नौरानियत थी कि वो इमाम के वजूद को देख रहे थे। ऐसे भी उलमा गुजरे कि जहाँ इमाम ने कहा कि करीब आओ तो कहा नहीं मौला, इससे ज़्यादा करीब नहीं आ सकता। कहा क्यों? कहा मेरा वजूद ये ताकत नहीं रखता कि आपके वजूद को बर्दाश्त कर सके। ऐसे भी उलमा थे, वो जानते थे अपनी ज़र्फियत कितनी है। अज़ीज़ाने मोहतरम, वो इमाम है कायनात का, वो मेरे आप जैसा शख्स नहीं है। हम तो बड़े बड़े उलमा के करीब नहीं जाते, घबराते हैं डरते वक्त कि उनके अंदर जो जलाल है, उनके अंदर वो जो विलायत उतरी हुई है अहले बैत की, उनके वजूद में इतना वो है कि हमें डर लगता है कि करीब जाएंगे तो कहीं पता नहीं क्या हो जाए। वो इमाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद इमाम हमें दूर करना चाहते, नहीं, मेरे अंदर नक्स पाया जाता है कि मैं अपने इमाम के पास नहीं जा पा रहा। ये नकायसी को तो दूर करने की करबला है कि वो नकायस को दूर करें, मैं अपने, मैं उन चीज़ों

को एक एक कर कर खोलूं। अगर मेरी जिंदगी के 20-25 सालों में करबला आई है तो मैं कम से कम 20 बुराइयां तो अपने वजूद से बाहर निकालूं। कहीं तो मैं खड़ा हूं, कोई तो सफ मेरी हर साल आगे बढ़े इमाम जमाना तक पहुंच, या वहीं खड़ा हूं जहां पहले था मैं वहीं खड़ा हूं, फिर करबला आई फिर वहीं खड़ा हूं। तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। वो तो इज़्ने इलाही का वक्त मुकर्रर है, कभी भी आएंगे। रिवायात में ज़हूर का मुतवक्का दिन जुम्मा, ज़हूर का मुतवक्का दिन आशूरा, कोई भी दिन है, लेकिन वो तो है। लेकिन मैं कितने दूर हूँ? जाने मोहतरम इमाम जाफ़िर सादिक़ अलैहिस्सलाम, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम से हदीस में आया कि काफ़ी लोग इमाम ने, जब इमाम के साथ जो लोग होंगे उनमें से कुछ ख़वातीन भी हैं, कुछ ख़वातीन हाजिर में से जो दौर गुज़र रहा होगा, और कुछ ख़वातीन जो हैं वो पीछे से यानी पिछले अदवार से भी आएंगी। उनमें से एक जो है वो आयतुल्लाह सैयद मेहदी अपनी किताब में जब इन ख़वातीन का ज़िक्र करते हैं तो एक ख़ातून वो थी जो फिरौन के दौर की ख़ातून है, और वो जो फिरौन का ख़जानेदार था उसकी ज़ौजा है। ये दोनों मवाहिद हो गए थे, यानी अल्लाह पर ईमान रखते थे, और जब पता चला फिरौन को तो इनको और इनके बच्चों को उनके सामने ही मार दिया गया। मवाहिद थे उस वक्त, मवाहिद। और इसी तरह और ख़वातीन जो हैं रसूल खुदा की, जो उम्मे एमन की, जिसको हज़रत सईदा ने अपना गवाह बनाकर भी फदक के मामले में पेश किया, इनको भी उठाया जाएगा। और एक जो हारून रशीद की ज़ौजा थी ज़ुबैदा, क्योंकि वो भी आप जानते हैं कि वो भी अंदर से अहले बैत के मानने वाली थी, उस दौर में जहाँ पानी मुश्किल था लेकिन कई कई दूर तक पानी के कुएं खुदवा कर लोगों तक देना। और एक वो सुमैया कि जो सातवीं इस्लाम लाने वाली खातून थी जिनको मक्का में जो है वो अज़ियत दिया गया। और ख़वातीन हैं इंशाअल्लाह फिर अगर मौका मिला तो, यानी उन दौर से भी ख़वातीनों को उठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दौर में जो उनका वजीफ़ा था उसे बेहतर तरीके से अदा किया। अगर आज के दौर में मैं अपना वजीफ़ा बेहतर तरीके से अदा करूँ, यानी ख़वातीन आज कल की, ये ना समझें कि सब मर्द सिर्फ इमाम ज़माना के साथ, तो ख़वातीन हैं 40-45 ख़वातीन हैं जो इमाम ज़माना के साथ होंगी। आयतुल्लाह उज़्मा बहजत कि आपकी सलावात उनके दर्जात में इजाफा करूँ, आयतुल्लाह मुज्तहिदी तहरानी रश्ती के बारे में बताते हैं कि उनकी फैमिली में खातून थी, अपने घर वालों के साथ ज़्यारत करने गईं करबला और नजफ़ की, तो उनके वालदैन ने वहीं पर किसी तालिब इल्म से उनकी शादी कर दी। शादी हो गई, कुछ दिन गुज़रे तो घर याद आने लग गया, वालदैन याद आने लग गए, और शोहर जो थे वो तालिब इल्म, वो दोपहर को आ जाते थे, कुछ गोश्त ले आते थे और अपने साथ कुछ मेहमान भी ले आते थे। अब वो इस रूटीन से, इससे उनको चिड़चिड़ाहट शुरू हो गई, कराहट शुरू हो गई, तंग आना शुरू हो गई। एक दिन शदीद बुखार हो गया, और इसी बुखार की हालत में देखा कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाई है, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। और बीवी फरमाती हैं कि तुम्हारी शिफा तुम्हारे शोहर के हाथ में है, तो ये कहकर चली गई। फिर जब उनका शौहर आया तो उसने अपना जो अबा थी जो थी उसके अपनी ज़ौजा के ऊपर डाला, तो वो ठीक हो गई। जैसे ही ठीक हुई तो फौरन चली गई हरम मौलाए कायनात में, और जाकर के मैं वहाँ जाकर को, लेकिन जैसे ही गई तो देखा कि सामने से मौलाए कायनात ख़ुद तशरीफ़ ला रही है। ख्वाब नहीं देख रही वो, आयतुल्लाह उज़्मा बहजत बताते हैं कि ये ख्वाब में नहीं है, ये कश्म में, ये अपना ज़िंदा और जागते हुए हालत के अंदर वो देख रही हैं। लेकिन इससे कि अपने आप को रास्ता बदला कि किसी और रवाक की तरफ चली जाऊं, किसी और तरफ गेट से चले जाऊं, देखा मौला सामने आ गए और कहा कि हमारी तुम पर नज़र है,
ہم نے تمہارا انتخاب کیا.

अब आए, और ये जो तुम्हें परेशानी है तुम्हारे घर वाले, जाओ अपने घर में जेरे ज़मीन में जाकर बेसमेंट में जुगाल यानी जो कोयला है उससे 40 लाइनें खींच लो, ये ख़त्म नहीं होंगी, तुम्हारे वालदैन पहुँच जाएंगे तुम तक। और जब भी तुम्हें कोई मुश्किल हुआ करे तो अपने छत पर जाकर तवस्सुल कर लिया करो, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। वो उसने यही किया। अब उनके शौहर जब भी वो खाना लाते थे, ये एक ही बर्तन में सारी चीज़ें डालकर छत पर जाकर कुछ सलावात पढ़कर हदिया करती थी, वापस आती थी, खाना पका हुआ बाकायदा लजीज हर चीज़ बना होता था। आयतुल्लाह अज़मा बैद फरमाते हैं कि खातून इस मकाम पर, इस दर्जे पर पहुँच सकती है, पहुँच सकती है। आयतुल्लाह अराकी की बहन हज पे जाने वाली थी, इस खौफ से हज पे नहीं जा पा रही थी कि तवाफ में कहीं कोई नामहरम टकरा ना जाए, ये खौफ था उन्हें कि नामहरम तवाफ की हालत में कोई टकरा ना जाए। तो अपने भाई के पास आई, उन्होंने एक जिक्र दिया पढ़ने को, पढ़ो और जाओ, पढ़ती हुई चली गई। जैसे ही तवाफ़ कर रही थी ये खौफ सा पैदा हुआ तो अचानक से देखा कि कोई एक बहुत मोतबर शख्सियत आई है और एकदम मेरे पास आई और कहा कि मेरे पीछे पीछे चलो। और मैंने देखा कि बाकी सब एक फासला हो गया और मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ, और वो कोई और नहीं, वो वक्त का इमाम था। और कहती है कि मैंने इस तवाफ में कई दफ़ा उनको हाथ लगाकर तबर्रुक किया और जैसे ही मेरे तवाफ़ ख़त्म हो गए अचानक से वो चले गए, बाहर आ गए। यानी इंसान अगर अपने वजूद को पाक कर ले, कोशिश कर ले, थोड़ी सी कोशिश, देखिए बहुत बड़ा काम नहीं करना हमने, मैं थोड़ी सी कोशिश करूं बस, और वहाँ वो मुंतज़िर हैं मेरे कि मैं कोशिश करूं वो मुझे अपनी तरफ खींच लेंगे। देखा मैं कोशिश नहीं करता, अज़ंद करबला कोशिश का नाम है कि जिसने कोशिश की, जो कि ज़ुहैर इब्ने कैन जैसी शख्सियत के जो उस्मानी मसलक रखता है कि जब एक जंग में मुकाबले में है और जीत गया है सामने ज़ाहिर में तो हज़रत सुलेमान के बराबर में, हज़रत सुलेमान कहते हैं ये खुशी का मकाम नहीं है। तो ज़ुहैर कहते हैं मुझे ताज्जुब हुआ कि क्या मतलब, कहा खुशी का मकाम वो होगा कि जब तुम सैयद उश्शोहदा की रकाब में शहीद हो गए। यानी उसे पता ही नहीं है उस वक्त तक, लेकिन जब पहुंचा है और जब रास्ते में कारवान गुजरा और जब पैगाम पहुंचाया तो ज़ुहैर ने सब छोड़ दिया इमाम हुसैन के लिए, और रोज़े आशूरा इमाम नमाज पढ़ते रहे और ये तीर खाते रहा। और तीर खाकर जब गिरा है कहा मौला क्या मैंने अपना हक अदा किया। बस ये है एक एक तरफ बढ़ना, एक चीज़ छोड़ दे इंसान को, बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी में। एक चीज़ इमाम ज़माना के लिए करना शुरू कर दूं और एक चीज़ मैं इमाम ज़माना की खातिर छोड़ दूं, बस ख़त्म, फिर वो जाने और उनका काम जाने। हम कोशिश तो करें, हम आगे बढ़ें, करबला सुन सुन कर उठें और करबला ही नहीं बने आदमी, यानी कैसे बनेगा जानो, दे सफ कैसे तैयार होगी। इमाम ज़माना के लिए कोई और लोग आएंगे, कहीं और से आएंगे, हॉवर्ड यूनिवर्सिटी से उठेगा कोई, यकीनन उठेगा कोई, लेकिन ये जो दर्जगाह है हुसैन की, इमाम हुसैन की जो यूनिवर्सिटी सुबह शाम खुली हुई है इतने महीनों तक, इसमें से कोई नहीं उठेगा, इसमें से कोई नहीं करबलाई बनकर इमाम की खिदमत में पहुंचेगा। कहाँ से पहुंचे फिर वो जो इमाम गिरिया अगर करते हैं तो फिर इमाम का गिरिया सही है? जो इमाम जब हमारे तरफ देखते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, तो इमाम गिरिया करते हैं कि ये मेरे मानने वाले, मेरे चाहने वाले किन कामों में रखे हुए हैं, इनके अमाल कैसे हैं। जाने मोहतरम मैंने पहले भी अर्ज़ किया जब मैं आया, अगर हम अपने इमाम को खुश नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अपने इमाम को रुलाएं नहीं, रुलाएं नहीं। यानी इमाम को किन लोगों ने रुलाया है, इमाम को किन लोगों ने अजियतें दी, कितने आइम्मा को कैद और जिंदान में रखकर कितनी तकलीफ़ें दी हैं इमामों को, और अभी 11वां 12वां इमाम हमारा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम आमादा नहीं, हम रेडी नहीं है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि इसको भी लोग वैसे ही तकलीफें दें जैसे उन्होंने पहले दी हैं। अभी इमाम आए, अल्लाह करे जल्दी आए, जल्द से जल्द आए, कब तक मैं मौला आपका इंतज़ार करूँगा, न जाने किस दिन मेरी रात कब्र में हो जाए और आप आ जाए। मेरी जवानी गुजरती जा रही है, मैं चल ना पाऊँ और आप आ जाएं, मैं उठ ना पाऊँ और आप आएँ मौला, देर हो जाएगी, कहीं मेरी ज़िंदगी के तारे डूब

वापस नहीं आएगा। और वो बच्ची जो सुबह से देख रही है कि भाई अली अकबर गए और वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए, ओनो मोहम्मद गए वापस नहीं आए, हत्ता अली असगर भी गया, तो प्यासा पानी की प्यास तो बुझी मगर पानी की ना बुझी, खून से सहरा होकर वापस आया है। हाँ ज़ादारण मोहतरम, इसीलिए वो मकाम पर जब आखिरी वक्त में ये बच्ची अपने बाबा के साथ गले लगकर गिरिया कर रही है, न जाने वालिद ने कान में क्या कहा, बच्ची खामोश हो गई। क्या कहा? यही कहा, बयान करते हैं अरबाब के बच्ची को कहा कि बेटा तुम्हारी और हमारी मुलाकात में ज्यादा फासला नहीं है। अब ये बच्ची पूरे रास्ते पर उस मकाम को देख रही है कि वो कौन सा मकाम आएगा कि जब मैं अपने बाबा के पास जाऊंगी। हाँ ज़ादार मोहतरम, अय्याम चल रहे हैं, अय्याम गिरिया के हैं, अय्याम शहादत के हैं। जब ये शाम पहुंचा है, काफिला कारवान शाम कल पहुंच चुका है, न जाने कितने दिन बाजार में खड़ा रहा, मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं भी पढ़ूं। हाँ मगर शाम के जिंदान में जब बच्ची ने शोर मचाया ना, तो बच्ची ने शोर मचाया। जजीद कहता है कैसा शोर है ये? कहा बच्ची है जो बाबा बाबा करिए। तो कहा दे दो उसे। क्या दे दो? अरे वो तश्त दे दो जाकर उस बच्ची को। हाँ ज़ादारण मोहतरम, वो तश्त जब लाया गया, अब समझे कि शायद कोई खाना आया होगा। जैसे ही उसमें से कपड़ा हटा तो क्या देखा, मेरे मौला का खाक और खून में अटा हुआ सर था। अरे बच्ची ने पकड़ा और अपने आप से जोड़ा, अरे बाबा आप कहाँ थे जब हमारे हाथों में रस्सियां हुई, अरे बाबा आप कहाँ थे जब खेमों को आग लगी, अरे बाबा आप कहाँ थे। अरे कहते कहते बच्ची खामोश हो गई। मेरी बीबी ज़ैनब समझी शायद बच्ची सो गई होगी, मगर जाकर क्या देखा, एक तरफ बच्ची है एक तरफ सर है, उसी कुर्ते में मेरे मौला सज्जाद ने अपनी बच्ची को उठाया, बहन को, और उसी जिंदान में दफना दिया। मातम हुसैन।

0: ये क्या हो रहा है? शोर की आवाज कैसी है? इस शहर में क्या हो रहा है? बताते क्यों नहीं? जिंदानबान, ओए जिंदानबान, जिंदानबान,
1: ए निगहबान, इधर आओ।
2: निगहबान, जिंदानबान,
1: निगहबान,
2: ए जिंदानबान,
0: क्या हो गया है? क्यों शोर कर रहे हो?
2: हो रहा है।
0: ये रोने की आवाज कैसी है?
3: बताओ क्या हुआ?
0: अपनी जगह पे वापस चले जाओ। ये रोने की आवाज कैसी है?
2: आते क्यों नहीं हो?
3: बोलते क्यों नहीं हो? बताओ क्या हुआ?
4: जानना चाहते हो ना? लो सुनो, बनी हाशिम सोग मना रहे हैं। ये आवाज बनी हाशिम के सोग मनाने की है। हसन इब्न अली दुनिया से चले गए, वो गए।
2: झूठ बोल रहे हो।
0: खुदा लानत करे तुम पे मुनाफिक।
1: तुम झूठ बोल रहे हो हमें अजियत करने के लिए।
3: तुम हमें परेशान करने के लिए झूठ बोल रहे हो। सही बात क्यों नहीं बताते?
2: झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे।

0: जल्दी करो, आ जाओ।
1: एक एक करके यहाँ से निकलते जाओ, जल्दी करो वरना वो हमें पकड़ लेंगे। चलो जल्दी निकलो, भागो यहाँ से, जल्दी भागो।
0: वो लोग फरार हो रहे हैं, चलो जल्दी करो पकड़ो उन्हें, जल्दी करो।
1: तुम लोग जाओ, मेरी फिक्र ना करो, मैं आ जाऊंगा।

0: उधर देखो सरदार, वही लोग जो जिंदान से फरार हो गए थे।
1: उनको छोड़ो, अभी उससे बड़ा मसला भी हमारे सामने है। आज बहुत सौ का खून बहाया जाएगा। ठहरो, ठहर जाओ। मैं मरवान इब्ने हकम मदीने का हाकिम होने के उनवान से तुमसे एक सवाल करता हूं।
2: ऐ पिसरे हकम, बेहतर है कि तुम अपनी और अपने साथियों की जान पर रहम करो और हसन इब्ने अली के अजादारों के रास्ते से हट जाओ, वरना खुदा की कसम अभी मेरे अंदर वो कैफियत पैदा हो चुकी है कि अगर मैंने तलवार उठा ली तो तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
1: अदी, मैंने तुमसे कहा कि एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे दोस्ताना सवाल का जवाब यही है।
2: हम चाहते हैं कि हसन इब्ने अली को मस्जिद नबवी में उनके नाना के पहलू में दफन करें।
1: यह मुमकिन नहीं है।
0: मुमकिन नहीं है?
3: यह मुमकिन नहीं?
1: हाँ, कतअन मुमकिन नहीं है। क्या बनी हाशिम ने इजाजत दी थी कि उस्मान इब्ने अफ्फान के जनाजे को कब्र पैगंबर के नजदीक दफन कर दिया जाए?
0: उस्मान की बात नहीं है, बात हसन इब्ने अली की है। हसन इब्ने अली रसूलुल्लाह के आबरूमंद फर्जंद हैं।
4: उस्मान कातिब कुरान थे और सहाबा में पैगंबर से करीब थे।
3: तू अपना नजिस्म बंद कर मलऊन। खुदा की कसम, अगर अब मैं तलवार उठाऊं तो ऐसा जर्ब लगाऊंगा कि तू जहन्नम में अपने मलऊन अजदाद के पास पहुंच जाएगा। अपना नजिस्म बंद कर मलऊन।
1: रुक जाओ, ठहर जाओ। अभी मेरे मना करने की एक और दलील है, वो ये कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने अभी अभी ये कासिद भेजा है और हमें यूं हुक्म फरमाया है कि इजाजत न दें हसन इब्ने अली को मस्जिद नबी में दफन किया जाए।
0: चलो आगे बढ़ो।
5: हुसैन इब्ने अली का कहना है कि मेरे भाई की वसीयत है कि मेरे दफन के वक्त किसी भी मुसलमान का खून नहीं बहना चाहिए। हुसैन इब्ने अली का कहना है कि बकी की तरफ चलो, वहां मेरे भाई को दफनाया जाएगा।

0: क्या हो रहा है? यहाँ क्या कर रहे हो? दारू खिलाफा में क्या कर रहे हो? रोको इन्हें, पकड़ो, चलो। कहाँ भाग रहे हो? हजार, क्या हो गया? क्या हो रहा है इस शहर में? हजार, ये तुम्हें क्या हो गया है?
1: ताऊन, ताऊन, ताऊन,
0: ताऊन। मत लगाओ, मत छुओ मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, जाने दो।
1: मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाओ, छोड़ दो मुझे। खुदा के लिए।

0: हारिस का सर कलम कर दिया था। वो मंजर सोचकर मेरा खून जोश में आ जाता है। मुगैरा, जब से मैं आया हूँ तेरा चेहरा एक लम्हे के लिए भी मेरी निगाहों से नहीं हटता। वो लम्हा मैं नहीं भूल सकता जब इसके इशारे से जल्लाद की तलवार ने हारिस का सर कलम कर दिया था। वो लम्हा सोचकर मेरा
1: कि उस वाक़े की याद आती है, मैं गुस्से से कांपने लगता हूँ। जब वो अबा मोहम्मद के खैमे से निकल के मुस्कराने लगा और ना चाह कर भी वो कहने लगा कि पूरे आलम इस्लाम में अबा मोहम्मद के अलावा किसी को भी मुसलमानों के जान व माल की फिक्र नहीं है। उसकी इसी बात की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा फितना खड़ा हो गया।
2: हाँ इब्ने हुरैस, ये लो, ये देखो, देखो अमीर ने तुम्हारे मांगे वो जवाब में क्या लिखा है। तुम बाहर रुको। लिखा है कि दमिश्क आने का तुम्हें हक नहीं है, वहीं रहो जब तक ताऊन खत्म ना हो जाए। डरता है कि हम दमिश्क और उसके महल में ताऊन ना फैला दें। देख रहे हो कि किस तरह हमारी जहमतों का सिला देता है।
3: अब क्या करना चाहिए, कब तक हम यहां रुके रहें?
2: अंधे हो नहीं पड़ा जब तक ताऊन खत्म ना हो जाए।
3: कब तक हम यहां रुके रहें?
2: जब हमें और तुम्हें वासिले जहन्नम करेगा, वासिले जहन्नम। कल ही एक कासिद कूफा भेज दो ताकि जो वहां हो रहा है हमें उसकी खबर दे।
3: इताअत होगी।

0: कौन हो तुम?
1: ताऊन, तुम्हें जहन्नम पहुंचाने के लिए आए हैं।
0: चलो मारो।
2: ये वही चीज है जो तुम्हें बहुत पहले मिलना चाहिए थी और मुझे भी इसका इंतजार था।

0: चलो तैयार हो जाओ।
1: हसन इब्न अली
2: भागने न पाए, भाग के पीछे जाओ, उनका पीछा करो,
1: जाओ उनका पीछा करो, पहाड़ के पीछे गए हैं, जिंदा पकड़ के लाना।
2: जिंदा पकड़ के लाओ।

0: खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब जब के हमारी बेयत अमीर अल मोमिनीन के साथ, जब तक मलकुल मौत हमें जहाने फानी से जहाने बाकी की तरफ नहीं ले जाता, मजबूत और मुस्तहकम है। लिहाजा मैं अवाम की जानिब से अमीर अल मोमिनीन की खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है कि आज हम एक अजीम शान खलीफे के वजूद से फैजयाब हों, लेकिन कल को हमारे बच्चे एक अजीम खलीफा के साये से महरूम हो जाए। खुदा की कसम ऐसा नहीं होगा, ये ऐन जुल्म है। खलीफतुल मुस्लिमीन का कोई तो जानशीन होना चाहिए। हक ये है कि दुनिया में अमीर अल मोमिनीन के इंतहाई लायक और खलफ फर्जंद से बेहतर कोई नहीं। ऐसा फर्जंद जो खिलाफत के आसमान का सूरज और खुदा का बरगुजीदा बंदा है।
1: खुदा बंदे आलम अमीर अल मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। यकीनन आज के इस दौर में यजीद से बढ़कर खिलाफत का हकदार कोई नहीं है। ए अमीरुल मोमिनीन, अपनी इस उम्मत को अपने बाद लावारिस न छोड़े।
2: खुदा का शुक्र कि उसने हमें और हमारे खानदान को मुसलमानों की बंदगी और खिदमत का मौका दिया है। यही हमारे लिए काफी है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ये दुनिया एक खेल का मैदान है। कसम खुदा की मैं इस शोर व फितने से आजिज हो गया हूं। हथेली भर जमीन और एक मश्क पानी चाहता हूं कि खुद अपने हाथों से चावल बोऊं, आबियारी करूं और अपनी जिंदगी इबादत में गुजार दूं। लेकिन नहीं मालूम कि खुदा ने तुम लोगों का बोझ मेरे कंधों पे क्यों लाद दिया। अपने बेटे के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने कांधों पे तुम लोगों का बोझ अब नहीं उठा सकता। काफी है, बस है।
0: अल्लाह अल्लाह ए अल्लाह, इसकी इज्जत में इजाफा कर कि तेरी इज्जत का मुहाफिज है और तेरी आरजुओं को जमीन में नाफिज करने वाला है। खुदा तुम्हारी नेमतों में इजाफा करे। अगर तुम इस जमात की हाजत कबूल करो और हमारे दिलों से ऐसे दर्द को दूर कर दो।
1: आगाह हो जाओ, ये बात जान लो कि अगर अमीरुल मोमिनीन कबूल फरमाए तो मैं इस नेमत के शुक्राने के तौर पर 100 गोसफंद, 10 शुतुर, 12 नाके कुर्बानी करके उन्हें फुकरा के दरमियान तकसीम करूंगा। मैं उसके दो गुना जितना तुमने कहा है कुर्बानी करूंगा।
0: खुदा अमीरुल मोमिनीन को सलामत रखे, मैं उससे 3 गुना ज्यादा कुर्बानी करूंगा। 300 बकरियां, 30 ऊंट और 40 नाके।
2: तुम्हारे करने से क्या होता है? शायद लोग पसंद न करें।
3: नहीं, ऐसा नामुमकिन है। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने मुआहिदे पर दस्तखत किए। ये कानून के खिलाफ है। ये धोखेबाजी करके रहेगा। ये गलत करता है। ये झूठा है। खिलाफत नहीं छोड़ेगा।
4: ये दगाबाज है। खिलाफत छोड़ने वाला नहीं है। देखो डरा के हम सबको बैत ले रहा है।
2: और दमिश्क वाले तो मेरे बेटे को अच्छी तरह पहचानते हैं। उसका जोहद व तक्वा और खुदा परस्ती से भी वाकिफ है। जहां तक मैं जानता हूं सब उसे पसंद करते हैं और बईद है कि कोई उसका मुखालिफ हो और उसे पसंद न करता हो। और तुम लोग बुजुर्गान शाम, तुम लोग क्या चाहते हो? यजीद को मेरा वली अहद इंतखाब करोगे? अगर कोई मुखालिफ हो तो बता दो, कोई बात नहीं, कोई भी कुछ नहीं कहेगा।
4: बोलता है कुछ नहीं करेगा। ऊपर देखो धमका रहा है।
2: बस इत्मीनान के लिए एक और बार पूछता हूं, क्या तुम लोग जान और दिल से मेरे बेटे यजीद की बैत करोगे?
0: हाँ जरूर जरूर।
2: ये

जान लो कि जर्रा बराबर भी किसी के दिल में शक नहीं होनी चाहिए। बैत खलूस से नीयत तहे दिल और एतमाद से होना चाहिए। खुदा करे कबूल हो।

0: क्या बात हो गई है?
1: रास्ते में कुछ लोगों ने हमला किया और बानू को तीर से हलाक कर डाला। जरूर हसन इब्न अली के साथियों का काम होगा।
2: मर गई?
1: हाँ, दोनों तीर बानू के दिल में लग गए।

0: तुम्हें उसका बेजान बदन देखना गमजदा नहीं करेगा।
1: क्या कहूं, मैंने मुर्दा लाशें बहुत देखी हैं।
0: अब इसके बाद और ज्यादा देखोगे।
1: हाँ, मैं सिर्फ अपनी लाशें का सोचता हूं तो मुझे डर लगता है।
0: मेरा लाशा?
1: हाँ, आपका लाशा भी देख के मुझे गम होगा।
0: बेचारी कितनी आरजूमंद थी, अपनी आरजू न पा सकी, तुम्हारी खिलाफत नहीं देखी।
1: हाँ बेचारी, इस महल में सिर्फ उसी को ऐसी आरजू थी।
0: और मैं?
1: हाँ आपको भी आरजू है, लेकिन आप भी नहीं देख सकोगे।
2: वो आए और मुझे अपने बाप का महल दिखाए।
0: ये औरत कौन है?
3: अशस की बेटी, वही जिसने हसन इब्न अली को जहर दिया।
0: आगे आओ, देखते हैं।
2: ए बुढ़े, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मुझे इस तरह से बात करो? मैं यजीद इब्न माविया की बीवी हूं, मैं ज्यादा हूं। चलो उठो, मेरी ताजीम करो, आओ मुझे सजदा करो।
4: ये लड़की तो पागल हो गई है।
1: क्या कह रही है?
0: मुझे जानती हो?
2: तुम्हें नहीं, नहीं जानती।
0: मैं हूं माविया।
2: माविया? मैं किसी ऐसे नाम वाले को नहीं जानती हूं। नहीं, मैं सिर्फ यजीद को जानती हूँ।
1: यजीद को जानती हो?
2: हाँ मैं यजीद को जानती हूँ। काटने वाले बदशकल कुत्ते, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मुझसे हम कलाम हो? कैसी बेवकूफी के सवाल कर रहे हो? क्या ये मुमकिन है कि मैं अपने शोहर को ना पहचानूं? जाओ मेरे शोहर को इत्तला करो, कुछ ख्वाहिशें हैं जो मैं उससे बयान करना चाहती हूँ।
0: यजीद से क्या चाहती हो?
2: वही कूजा।
1: कूजा?
2: वही कूजा जिसे अबा मोहम्मद ने पिया है। चाहती हूँ कि मैं भी उससे घूट पानी पी लूं। मैं बहुत प्यासी हूँ।

0: दीवानी।
1: दीवानी? दीवाना तू है कि जो मुझे नहीं पहचानता? अभी तेरी मोटी मोटी आंखें निकाल लूंगी। बानो उठ जाओ, तय था कि तुम कूजा लाओगी और मैं उस कूजे में जहर मिलाऊंगी। निकालो, कहाँ छुपा रखा है वो कूजा, मुझे दे दो, मेरा मुस्तकबिल उसी से वाबस्ता है। देखा, सो रही है, वो भी ऐसे मौके पर जब मैंने फैसला कर लिया था कि उसका काम तमाम कर दूं। आंखें क्यों नहीं खोलती, बता जहर कहाँ है? मैंने तेरे दिए हुए तोहफे को हाथों में लिया और घर पहुंची और इंतजार करती रही। काफी देर उस कोने में बैठी रही और हैरत से उस तोहफे को देखती रही। तभी मैंने यजीद और माविया को देखा कि फाखरा लिबास पहने हुए हैं, मेरे इस्तकबाल को आए हैं, मेरा हाथ चूम रहे हैं। उस तोहफे में मैंने जहन्नुम को भी देखा कि जिसका दरवाजा मेरे लिए खुला हुआ है। जहन्नुम? मैंने सुना है कि माविया के पास जन्नत है जो अमल की जजा में दे देता है। खुदा के लिए तो मुझसे पूछो कि मुझे अपनी जन्नत में जगह देगा? और जबकि मैंने उसकी इतनी खिदमत की है, तो क्या वो अपनी जन्नत में मुझे जगह नहीं देगा? मैंने खुदा की जन्नत के बदले माविया की जन्नत खरीदी है, क्यों, क्या मैंने अच्छा सौदा नहीं किया? मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। अबा मोहम्मद नमाज में थे, मैं मुंतजर रही देर तक। वो कमरे से निकले और मैं कमरे में दाखिल हो गई। मैंने जहर को कूजे में डाला और बाहर आ गई। यजीद क्यों नहीं आ रहा? मैं बेताब हूँ। लेकिन इस औरत ने कहा था कि यजीद मुझे अपनी बीवी बनाएगा, लेकिन झूठ कहा था। मैंने उसे शोहर के तौर पर इंतखाब किया था और अब तलाक देती हूँ। यजीद दीवाना और बदशकल है, और ये दोनों सिफात उसे विरसे में अपने बाप से मिली हैं। जब माविया बिस्तर मर्ग पर था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो यजीद खुशी से कूद रहा था। क्या ये सही है? क्या ऐसे शख्स पर जो अपने बाप की मौत पर खुशियां मना रहा हो एतमाद किया जा सकता है? या मुझ जैसी जिसने अपने शोहर को जहर दिया है, उम्मीद रखी जा सकती है? वो भी ऐसा शोहर जो आलम का सरदार था, जिसने माविया को अपनी गुलामी के लिए भी कबूल नहीं किया। मैं कोने में छुपी हुई थी जब हसन इब्न अली आए। बहुत प्यासे उन्होंने कूजे से एक प्याला पानी पिया। मुझसे गलती हो गई कि जहर कूजे में डाला। काश मैं उस पानी को खुद पी लेती और हलाक हो जाती। और इस वक्त मुर्दों के महल में माविया यजीद की मौत के साथ इस कनीज की हम सफर होती। सख्त है, बहुत सख्त है, बहुत गर्म है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि अंधेरा फैल रहा है? बदरूहें आगे बढ़ रही हैं और मुझे बुला रही हैं। मुझे उनका जवाब देना है, अगर देर हो गई तो मैं उनके काफले से रह जाऊंगी। ठहरो, मैं आ रही हूँ, रुको, रुक जाओ, मैं आ रही हूँ, रुको।
2: उसे शहर से बाहर कर दो।